0: Okay, you're watching the news today. Let's turn to our other big story. We are bringing it to you from Tamil Nadu, where poaching allegations have now sparked another massive political row, with TVK and the DMK accusing each other of trying to spend crores of rupees to get MLAs to switch sides. The police have now arrested three people, accusing them of attempting to poach and threaten a TVK MLA whom they claim they wanted to vote in favor of the DMK in the assembly. The DMK also wants a vigilance report into these allegations of horse trading. Take a look at the high drama in Tamil Nadu.
1: Poaching, threats, and a political slugfest. A fresh political storm has erupted in Tamil Nadu, with TVK and DMK accusing each other of approaching their MLAs with money and threats. Chief Minister Vijay's party has claimed that the DMK is trying to topple its government by luring its MLAs to its side. The Chennai police arrested three people, accusing them of attempting to poach and threaten a TVK MLA to act in the DMK's favour in the assembly. According to the probe, TVK MLA N. Ilayaraja was approached by pollster Thirunavakarasa. The pollster allegedly offered 35 crore rupees to the TVK MLA and sought his support for a resolution against the speaker. Ilayaraja rejected the offer and disconnected the call. Thirunavakarasa then allegedly threatened Ilayaraja and his family. The accused and his aides, Naresh and Thyagarajan, were arrested by the police. The probe has also claimed that former minister Senthil Balaji's brother met accused Naresh. Investigators further claimed that Thirunavakarasa approached Ilayaraja at Senthil Balaji's behest. TVK came down heavily on the DMK over the alleged poaching bid.
2: அந்த நபர் நரேஷ் என்ற நபர் கூட நரேஷ் தியாகராஜன் ஒரு மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஸோ இந்த நரேஷ் என்ற நபர் வந்து நேரடியாக செந்தில் பாலாஜியுடன் அவருடைய தம்பி அசோக்குடனும் நெருங்கிய தொடர்பில் இருப்பவர். அவருடன் தினமும் பேசியிருக்கிறார். ஒவ்வொரு நாளும் இது தொடர்பாக எல்லா கம்யூனிகேஷனும் பண்ணியிருக்கிறாரு. எப்பப்போ யார் யாரிடம் எவ்வளோ பணம் கொடுக்கணும், எந்தெந்த எம்எல்ஏவை நான் வாங்க போகிறோம், இந்த மாதிரியான வேலைகளை செஞ்சிருக்கிறாங்க. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ஒரு கேவலமான கீழ்த்தரமான வேலையை திரு ஸ்டாலினும் உதயநிதியும் அவர்கள் கையில் வைத்திருக்கும் மற்ற ஒரு சில செந்தில் பாலாஜி போன்ற நபர்களை முடக்கிவிட்டு முழு நேரமாக மற்ற கட்சி எம்எல்ஏக்களை பல கோடி கொடுத்து 50 கோடி வரை பேரம் பேசப்படும்.
1: The DMK too has leveled similar allegations against TVK. Stalin's party has sought a probe into the alleged horse trading attempts by TVK and submitted a complaint to the Tamil Nadu governor and the vigilance department, seeking the resignation of an FIR and probe into the alleged attempts of poaching by Chief Minister C. Joseph Vijay. Citing public remarks by MDMK leader Vaiko, where he claimed that Vijay told him to persuade MLAs.
3: நாங்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை முதலமைச்சராக இருக்கிற மாண்புமிகு ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையிலான ஆட்சிக்கு ஆதரவாக நாங்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை இடைத்தேர்தல்களில் ஆதரிப்போம். உள்ளாட்சி தேர்தல் வருமானாலும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தோடு தோழமை ஏற்படுவதற்கான வகையில் எங்களுடைய நடவடிக்கைகள் அமையும்.
1: Just days ago, Stalin had predicted that assembly elections could be held within the next few months.
4: தேர்தல் எப்போ வேணுமோ வரலாம், விரைவில் வரலாம், ஒரு 3 மாசம் கழிச்சு வரலாம், ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு வரலாம். எது நடந்தாலும், எப்போ எது நடந்தாலும் நாம ரெடியா இருக்கோம்.
1: Will a probe reveal the truth behind the horse trading allegations? With Pramod Madhav, Bureau Report, India Today.
0: Okay, let's turn to Get Real India. The word bulldozer has acquired a rather ominous signal in Indian society today. The latest comes from Chhattisgarh, where the people watched bulldozers crush not just their homes, but a lifetime of memories. Children, the elderly, entire families were left sitting beside the rubble as over 90 homes were destroyed and demolished in Chhattisgarh's Nakti village. The government claims these were encroachments and those displaced will get flats. But the residents say that they will fight what they are calling bulldozer Raj. Take a look at this report from Sumi Rajappan.
5: Children clung to their parents. Elders watched in silence as years of memories turned into piles of rubble. Bulldozers plowed into Nakti village near Raipur on Tuesday to clear land for a proposed colony for MLAs. More than 90 families lost their homes.
6: नेताओं का जो जैसे अपन बोलते हैं ना चुनाव के समय जो बोलते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा वादा लेकिन वो वादा बस है वास्तविकता में कुछ नहीं होता मैम
7: हजरत का दरा देता हमर मन के नोनी बाबू के दरा दे दाई वो हम ही कहा था शासन पर शासन से हमर दंड ऐसे संसार में किसी का घर मत तोड़ाए गरीब अमीर सब इंसान है
8: खटेंगे ही नहीं यहाँ से क्योंकि भैया है भाभी है मम्मी है पापा कहाँ जाएंगे हम लोग क्या अभी भी गए थे हम लोग 48 घंटा में जो नोटिस आया तब सांसद के पास सांसद बोले कि रास्ता निकालेंगे तो यही रास्ता निकालने के लिए हम लोगों को बुलाए थे कि हम लोग को आएंगे अचानक से तोड़ देंगे करके
5: द एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम्स द लैंड इज गवर्नमेंट चारागाह और लैंड मेंट फॉर ग्रेजिंग एंड द एक्शन वाज टेकन आफ्टर रिपीटेड नोटिसेस वर इशूड अंडर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड The administration assures displaced families are being rehabilitated in flats built for economically weaker sections in Sector 30 in Nava Raipur. But the villagers claim they have lived here for generations. They point to land records on the state's Bhuya portal showing villagers' names against Khasra number 460. They also question how electricity connections, water supply and houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana was sanctioned if their settlement was not recognized.
9: वहाँ पे प्रधान मंत्री आवास इंदिरा आवास भी मिला था
10: हाँ वो हुल फोड़ दीस भाई मिले दी पैसा तो हुल ले गए कट बंद कर दी घर फोड़ दी सब बेटा बहू के हमाला अब लेना अब कैसे हमला करना है मतलब भाई तू ही मन बताओ ना भाई
5: Those who have already got flats claim they lack basic amenities such as electricity.
11: हम लोग को यहाँ लाकर अब सोचे कि शिफ्ट के फेंके दोनों एक ही मतलब है क्योंकि हम लोग का यहाँ बहुत चीज की सुविधा नहीं है आप देख सकते हैं कि नल का जो कंडीशन है यहाँ से पानी निकलेगा यहाँ आएगा यहाँ का पानी यहाँ किचन में आएगा देखो खिड़की की वजह से पूरा हवा से बर्तन
9: हाँ
11: खिड़की भी नहीं लगी है बर्तन नीचे गिर रहे हैं
5: द डेमोलिशन ड्राइव हैज स्पार्क्ड अ पॉलिटिकल फेस ऑफ
12: कई सालों से निवास करने वाले ग्रामीणों को खदेड़ा गया है उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां विधायक निवास बनाना चाहते हैं विधायकों के लिए मकान बनाना चाहते हैं नए रायपुर में इतनी जगह है कौड़ियों के दाम पर उद्योगपतियों को दे रहे हैं वहां पर विधायक निवास आराम से बन सकता है लेकिन बसी बसाई बस्ती बसे बसाए मकानों को उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है
13: देखिए कोई किसी का आसियान नहीं उजाड़ रहा है और किसी के साथ में किसी भी तरीके का कोई अन्याय नहीं होगा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
14: More than 80 poor families are staring at their lost homes as administration is bulldozing these homes and in fact the administration has issued the eviction notices As the land is proposed to be cleared for the construction of an MLA residential colony, residents claim they have been living here for decades and they also claim that many houses were built under government housing schemes such as PM Awas Yojana and they have electricity, water and other civic amenities making the eviction unjust.
5: While the administration justifies what happened in Nakti as an anti-encroachment drive, the villagers vow to keep the fight on. With Sumi Keval Patel, Bureau Report, India Today.
0: Okay, let's turn to our good news story of the day, and it actually comes from the World Cup football, where the tournament has been lit up by the two greats of the game today. Lionel Messi is an all-time legend, arguably the greatest player the sport has seen. But he's now being chased by the one and only French superstar, Kylian Mbappe, whose two-goal superstar performance has taken France into the firm favourites position after they demolished Sweden 3-0 in the round of 32. Both these goal scorers are now chasing another big prize. Who will be the highest goal scorer in World Cup history? Messi has 19, Mbappe has 18. The race has just begun. Take a look.
15: France's Kylian Mbappe and Argentina's Lionel Messi are setting off the fireworks in the 2026 FIFA World Cup.
16: And Dembele. And Mbappe!
15: Mbappe opened the scoring at the stroke of halftime in France's first knockout game this year with a remarkable finish.
16: Oh, sweet, sweet Mbappe!
15: He was on the score sheet once again in the 74th minute, putting the result beyond all doubt after Bradley Barcola had scored France's second.
16: Who on earth stops the French playing like this?
15: That goal took Mbappe to the top of the golden boot race ahead of Lionel Messi, but only on assists. It also took him to the second spot in the all-time leading FIFA World Cup goalscorers list behind only Messi. Incidentally, Messi and Mbappe were central to one of the greatest ever World Cup finals in 2022. And given their placement on opposite sides of the knockouts bracket, there's every chance that they could meet once again in the summit clash. Sports Bureau, India Today.
0: Okay, that's just about all that we could pack in on the news today. Thanks very much for watching. You stay well, stay safe. Good night, Shubhratri. Jai Hind. Namaskar.
17: No.
18: Oh, no.
19: Welcome to Get Real.
17: I got something to say.
19: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
18: Oh my God.
17: It's got to be deliciously desperate.
18: Why do these girls forgive him?
20: Well, she has a soft spot for troubled men.
17: Boo bloody hoo.
19: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
18: Love runs deeper than we know.
19: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.

0: के बाद एहतियातन अंधेरी सबवे को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के साइन स्थित गांधी मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हैं ये गांधी मार्केट की सड़कें जो है बिल्कुल नदी में तब्दील हो गई है। गाड़ियां को काफी प्रेशर लगा करके आगे की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करेंगे तो उनकी गाड़ियां बंद हो जाएगी और एक बड़ी परेशानी हो जाएगी। आपको बता दें मुंबई और आसपास के इलाके में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते हालांकि आज जो है मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, हालांकि कल जो है कुछ देर के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन जब बारिश कम हुई है उसके बाद जो है मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो मुंबई और इसके आसपास के इलाके में तेज बारिश हो रही है, और ये जो चुके तेज बारिश के बाद अगर पानी जो जम जाता है रास्ते में तो छोटी गाड़ियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनकी गाड़ियां अक्सर बंद पड़ जाती है। सामने आप देख सकते हैं कई बाइक है, जो स्कूटी सवार है उन लोगों की गाड़ियां जो बंद हो गई है, इनको काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि अगर इनको ऑफिस जाने का टाइम है, अगर वो ऑफिस जाना हो या फिर किसी जरूरी काम से अगर वो जा रहे हो तो इनकी गाड़ियां जो है बंद पड़ गई है और इनको काफी परेशानी हो रही है।
1: हम अभी ऐसे जगह पे खड़े जहाँ से कॉलेज के दो छात्राओं को रास्ते से बाइक पर जाने के समय शॉक लगे, बिजली का जो झटका लगा उस झटके से दो छात्राएं घायल हो चुके हैं। ये वही स्पॉट है जहाँ पर एक वायर खुली थी, उस खुली वायर से इसी जगह से वो छात्राएं आ रही थी, उनको बिजली का झटका लगा है, उनको इलाज के लिए अभी एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जो बेलापुर से अपने कॉलेज से आ रही थी और अपने घर की तरफ जा रही थी, इसी जगह जब उनको बिजली का झटका लगने पर वो यहाँ पर गिर गई, स्कूटी पर से जाने के समय गिर गई। यही पे सामने एक बंदा खड़ा था जिसने दौड़ते हुए उन लड़कियों को बचा के अस्पताल में दाखिल करवाया।
2: Just a few days of the monsoon have exposed the authorities' preparedness or lack of to deal with heavy rainfall. Our financial capital, Mumbai, is witnessing widespread waterlogging, traffic snarls, road closures and even loss of life. Here's more. The Andheri subway, which was temporarily shut following heavy rainfall, has been reopened now by authorities. BMC workers used pumps to drain out the water. The subway has now been reopened to the people. Roads in Dadar are submerged underwater. Vehicles were seen passing through the flooded streets, sending waves of water crashing onto the pavements. Meanwhile, BMC officials were seen clearing drains to facilitate the drainage of water. Waterlogged railway tracks were witnessed at Dadar station as heavy rainfall continued to lash the city. Every year, Mumbai suburban rail services face delays and even cancellations due to waterlogged tracks. On your screens, pictures from Vasai, tons of heavy vehicles were swept away by the rain like paper boats. The administration later deployed a JCB, but even it was seen half submerged in the flood waters. King Circle, one of Mumbai's prominent and upscale localities, is grappling with waterlogging. A vegetable vendor was seen pushing his cart through the flooded roads.

0: अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: द एक्शन नेवर स्टॉप्स एंड नीदर डू वी। फ्रॉम ब्रेकिंग अपडेट्स टू मैच एनालिसिस, फ्रॉम बिग मोमेंट्स टू बिगर कॉन्वर्सेशन, दिस इज वेयर स्पोर्ट्स कम्स अलाइव। Fast, sharp, unfiltered, for the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
4: Your roadmap to India's best colleges is here. India Today Best Colleges Survey 2026. From colleges with exceptional placement records to top private medical and engineering institutes, emerging campuses and value for money options. Discover the institutions shaping tomorrow's leaders. India Today Best Colleges Survey 2026. Now available for speed delivery on Amazon and Blinkit. Subscribe now and get 500 rupees off with code COLLEGE26.

0: proceedings.
1: Namaskar, good afternoon, Your Excellency Ms. Takaichi Sanai, Prime Minister of Japan, Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations and friends from the media. We will now have the press statements by the two leaders. May I request Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, to give his remarks to the media.
2: Your Excellency, aur mori choti behan, Pradhanmantri Takaichi ji, dono deshon ke delegates, media ke saathiyon, namaskar, konnichiwa. India-Japan annual summit ke liye Pradhanmantri Takaichi ka Bharat mein apni pehli yatra par swagat karte hue mujhe bahut khushi ho rahi hai. Ve Japan ki pehli mahila Pradhanmantri bhi hai aur ek durdarshi aur lokpriya neta bhi hai. Itna hi nahi, वे जापान के नारा प्रीफेक्चर से आती हैं, जो भारत जापान की साचा बौद्ध विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है. फ्रेंड्स, कुछ ही दिन पहले G7 समिट में मैंने कहा था कि वैश्विक उथल पुथल के आज के माहौल में आपसी विश्वास हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है. और मुझे गर्व है कि भारत जापान की साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है. पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है. और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं. फ्रेंड्स, आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से है. एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है. क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं. इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे. फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी. इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है. भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं. जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा. डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है. नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा. अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल

भारतीय सेना, जैसे कि आप सब वाकिफ हैं, एक कॉम्बैट रेडी और बैटल हार्डन फोर्स है और युद्ध क्षेत्र की हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार और सक्षम है। इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी

0: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
1: Swing and a foul out of play off to the left.
0: Big 12 Radio.
2: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
0: Talk Sport.
3: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
0: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
4: Missing JEE Advanced by just 2 marks would have shattered the dreams of many. But for Meerut's Sanket Kumar, it became the motivation to work even harder.
5: उस चैलेंज को दिमाग में रखते हुए मैंने फिर एक साल का ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया. ना ही मैंने किसी कॉलेज में अप्लाई किया, अप्लाई भी नहीं किया, एडमिशन तो दूर, मैंने अप्लाई भी नहीं करा था किसी कॉलेज में. एंड फिर मैंने खुद से ही इसी कमरे में बैठ के अपनी पूरी सेल्फ स्टडी वगैरह करी एंड यहीं पे मैं रहा हूँ. अपने जो प्रीवियस नोट्स थे 11, 12th के, वो मैंने वापस से रिवाइज करे, मैंने फ्रॉम स्क्रैच वापस से अपनी प्रिपरेशन शुरू करी.
4: His perseverance paid off. In 2022, Sanket cracked both JEE Main and JEE Advanced and secured admission to the Indian Institute of Space Science and Technology, where he pursued aerospace engineering.
5: मेरे को IST में एडमिशन मिला, तो वहाँ पे जाके मुझे एयरक्राफ्ट से स्पेसक्राफ्ट तक का जो इनोवेशन है उस चीज के मैं इंट्रोड्यूस हुआ. एंड वहां पे जाके मैंने बहुत ज्यादा लाइक स्पेस कंजर्वेटिव भी पढ़ाई करी, तो उसने मेरे अंदर का इनोवेशन करा कि हाँ, नॉट एयरक्राफ्ट, नॉट समथिंग, बट समथिंग रिलेटेड टू स्पेस, समथिंग रिलेटेड टू रॉकेट्स. तो वहां से फिर मैं अपनी प्रिपरेशन मैंने वहां पे शुरू करी.
4: क्वालिफाइंग डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन हिज एकेडमिक परफॉर्मेंस, Sanket impressed the ISRO panel with his technical knowledge and has now been selected as a scientist engineer. He will be posted to ISRO's propulsion complex in Mahendragiri, where rocket systems undergo critical testing before launch. His family says his journey is proof that one setback does not define success. From missing JEE Advanced by just 2 marks to earning a place at ISRO, Sanket Kumar's story is a reminder that perseverance can sometimes achieve what talent alone cannot. Bureau Report, India Today.

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: अब ऐसे कई कंपनियां भारत के साथ लंबे अरसे से जुड़ी हैं, कुछ तो 100 साल से पहले से हैं। और जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है। प्रधानमंत्री ताकाई जी, मुझे बताया गया है कि आपको मोटर बाइक का बहुत शौक है। हमें बहुत खुशी है कि कावासाकी, यामाहा और होंडा की बाइक्स भी भारत में आज विश्व भर में एक्सपोर्ट होती है। इसी तरह एयर कंडीशनर हो या पावर ग्रिड इक्विपमेंट, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी, जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है। फ्रेंड्स, आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, When the going gets tough, the tough get going. भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही है। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कुछ ही महीने पहले हमने टैक्सेशन, गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए। हम हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव दे रहे हैं, जिसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं। और यही कारण है कि लगातार पिछले 4 वर्षों से जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC का सर्वे दिखाता है कि भारत जापानी बिजनेस के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन रहा है। आज मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं, मेरा ऑफिस यानी पीएमओ का दफ्तर एक डेडिकेटेड जापान बिजनेस वीक का आयोजन करेगा। इसमें पीएमओ के वरिष्ठ अफसर आपके साथ विचार विमर्श करेंगे, बैठेंगे, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ाने के लिए आपसे खुले मन से चर्चा करेंगे। फ्रेंड, आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची और मैंने अपने साझेदारी को और भी गतिशील और गहरा करने का निर्णय लिया है। हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एआई, डिफेंस, हेल्थ जैसे अनेक विषयों पर एग्रीमेंट किए, जिसे यह पार्टनरशिप फ्यूचरिस्टिक और लिमिटलेस बन जाएगी। हमारी सरकारों के बीच स्ट्रेटेजिक सिनर्जी है, कॉन्फिडेंस है और सबसे बड़ी बात क्लैरिटी है। अब इसे आउटकम्स में बदलने की जिम्मेदारी आप सभी पर है। फ्रेंड्स, आप सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि अगले एक दशक में जापान से भारत में निवेश 10 ट्रिलियन येन के टारगेट को भी पार करे और भारत में जापानीज कंपनीज की संख्या भी 10 वर्ष में डबल हो जाए। फ्रेंड्स, मैं आपके समक्ष एक विजन रखना चाहता हूं। मैं एक ऐसा विश्व देखता हूं जहां जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का मार्केट पोटेंशियल मिलकर सेमीकंडक्टर, फार्मा और क्रिटिकल मिनरल्स में दुनिया को रिजिलियंट सप्लाई चेन प्रस्तुत करें दे। जहां जापान का कैपिटल और भारत की एम्बिशन मिलकर शिप बिल्डिंग, मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी में नई ग्लोबल लीडरशिप तैयार करें। जहां भारत और जापान के स्टार्टअप से एआई, क्वांटम और बायोटेक में विश्व के नेक्स्ट जनरेशन सॉल्यूशंस आए और एरोस्पेस और डिफेंस में अभूतपूर्व सहयोग से हम ग्लोबल सिक्योरिटी में योगदान मजबूत करें। फ्रेंड्स, आइए ट्रस्ट और ऑप्टिमिज्म से भरी इस साझेदारी से म्यूचुअल ग्रोथ और ग्लोबल गुड का मार्ग प्रशस्त करें। जैसे टोयोटा वाले कहते हैं, आइए मिलकर लेट अस गो प्लेसेस। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: Thank you very much, Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, may I kindly request your attention.
3: Narendra Modi at the India-Japan Economic Forum. In fact, the highlight of this meeting was also one of the previous address he had given earlier, just a short while ago, where he had called the Japanese Prime Minister his younger sister. Takaichi says we'll develop this relationship as brother and sister. So clearly a warm greeting then. Remember, Japan and India go way back. It's about the kind of interactions, cultural exchange, people-to-people connections that India and Japan have had over the years. It's reflected well on possibly now the political exchanges also that are taking place. And it was in Hindi that Prime Minister Modi called the Japanese Prime Minister Choti Behen. So it was basically a welcome from Prime Minister Narendra Modi to his younger sister. That would be the new term, clearly, that would be used now for the Japanese Prime Minister. And this, remember, is an interesting annual summit, the economic forum that focuses on precisely the exchange and relationship that would be between India and Japan. The focus, of course, would be trade, but it goes beyond that. Remember, these summit talks, of course, will be about trade and exchange, but several other important decisions have been taken in the field of energy security, for example. India and Japan unveiled a lot of initiatives in this meeting. There was one, an economic partnership framework, a defense pact to co-develop military hardware, following talks between both the prime ministers. Major outcome has been basically a declaration on economic security, cooperation in the field of artificial intelligence and energy supply chain.

0: हेलो एंड वेलकम टू द स्पेशल ब्रॉडकास्ट। पिछले कई महीनों और सालों में हम लगातार आपके पास खबर लेकर आ रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण कितना बढ़ गया है। हमने सक्सेसिव सरकारों में, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, लगातार सवाल उठाए। ऑडिन इवन चलता है कि नहीं चलता है, स्मॉग टावर काम करता है कि नहीं, आर्टिफिशियल रेन से कितना फर्क पड़ेगा, सब पर हमने काफी क्रिटिकल क्वेश्चंस उठाए सरकार को। बट टुडे, टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, वी हैव अमंग्स अस एक ऐसी पॉलिसी जो एक बहुत पिविटल रोल प्ले करने वाली है फॉर दिल्लीज फ्यूचर। दिल्ली के पास एक नई अब ईवी पॉलिसी है। ये पॉलिसी पहले भी थी, लेकिन इस बार जो उसके चेंजेस आए हैं वो अलग क्यों हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये सिर्फ इंसेंटिव्स नहीं देती, ये एक हार्ड डेडलाइन लगाती है कि कब आईस व्हीकल्स जो हैं, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स हैं, फेज आउट हो जाएंगे दिल्ली से। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि अगर एक बड़ा चेंज दिल्ली में आया था सीएनजी पॉलिसी के चक्कर में, सीएनजी पॉलिसी के थ्रू जो शीला दीक्षित लेकर आई थी, तो ईवी पॉलिसी उससे ज्यादा या डेफिनेटली उससे कम इम्पैक्ट नहीं लाने वाली है। और वो लेकर आई हैं रेखा गुप्ता, जो हमारे साथ आज बैठी हुई हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम मैम।
1: थैंक यू सो मच।
0: आई हैव टू से दिस आउट राइट इन द बिगनिंग कि हमने साल भर आपसे बहुत क्रिटिकल सवाल पूछे। कोई और होता तो शायद इस इंटरव्यू के लिए आज अग्री नहीं करता, लेकिन आप यहां बैठी हैं, हमारे सवालों का जवाब देना चाहती हैं, सो कूडोस टू यू।
1: थैंक यू।
0: मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ईवी पॉलिसी के जो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, पॉलिसी का जो है इसके बारे में, इवन जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने काफी प्रेस करा है, काफी आपको लोगों ने बताया होगा, फीडबैक जो हमें भी मिल रहा है, हम जितने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं सबने काफी अच्छे से रिसीव करी है ये पॉलिसी। क्वेश्चन मार्क अब इम्प्लीमेंटेशन पर है, और मेरे रिसर्च के हिसाब से तीन चीजें हैं जिस पर ये इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है। नंबर एक, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किसे बढ़ाकर लाएंगी। नंबर दो, क्या आप ईवी जो व्हीकल्स हैं वो प्रोवाइड कर पाएंगी। और नंबर तीन, क्या आप ईवी व्हीकल्स वो जो हैं सही दाम पर, एक कंपेटिटिव प्राइस पर लोगों को दे पाएंगी। पहले वाले से शुरू करते हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या आपके एग्जीक्यूशन प्लान्स हैं?
1: ये बात बहुत सही है सोनल कि इस ईवी पॉलिसी की सक्सेस बहुत बड़ी मात्रा में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, और वी आर रेडी फॉर दैट। हमने पूरी तरीके से उसको प्लान किया, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर है उसको पार्टी बनाया। वैसे तो जनरली लोग अपने प्राइवेट व्हीकल के लिए घरों से ही चार्जिंग करता है मैक्सिमम, पर फिर भी पब्लिक प्लेसेस पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसमें हमने ओईएम्स को इन्वॉल्व किया है, उसमें हमने सोसाइटीज के लिए, उसमें सरकार के द्वारा डीटीएल, हर एक एजेंसी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में मदद करे, और उसके लिए बहुत ही ट्रांसपेरेंटली हमने सिंगल विंडो सिस्टम, ताकि लोग इसमें जो अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें ईवी के लिए, उसमें उनको कहीं पे भी हर्डल करेगी, सपोर्ट देगी, और अभी उनको कहीं पे भी हर्डल फेस ना करनी पड़े। सरकार उनको पूरी तरीके से फैसिलिटी देगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस देगी, मोटिवेट चार्जिंग पर, उनको कहीं पे भी हर्डल फेस ना करनी पड़े। सरकार उनको पूरी तरीके से फैसिलिटी देगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस देगी, मोटिवेट करेगी, सपोर्ट देगी, और अभी वर्तमान में 9000 चार्जिंग प्वाइंट हमारे पास हैं। हमारा टारगेट 32000 तक जाने का है, और उसके लिए लगातार हमने उसको नोडल एजेंसी डीटीएल को बनाया है, हम काम कर रहे हैं। ओईएम्स को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर किया है कि उनको भी अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, इवन सोसाइटीज को, और कॉमन प्लेसेस पे भी हम इसको लगाने वाले हैं। तो मैं श्योर करती हूं दिल्ली की जनता को कि आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है।
0: जी, पॉलिसी में लिखा है कि 32,000 चार्जिंग पॉइंट्स बनेंगे मार्च 2030 तक। अब चार्जिंग पॉइंट्स के लिए आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देना नहीं होता है, आपको लैंड भी प्रोक्योर करनी होती है, और दिल्ली बहुत ही पिक्यूलियर स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है। लैंड कई बार आपकी नहीं है, कभी एमसीडी की है, कभी किसी और अथॉरिटी की भी है, कभी एनडीएमसी की है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, आप कॉन्फिडेंट है कि ये नंबर रीच हो पाएगा?
1: मैं आपको इस बात को जरूर ध्यान दिलाऊंगी कि जब बात होती है कि डबल इंजन सरकार की, आज दिल्ली स्टेट में जो गवर्नमेंट है सेंटर में, स्टेट में, एमसीडी में, सभी एजेंसीज एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं। और जब हमने आरोग्य मंदिर खोले तो हमने बाकी एजेंसीज की लैंड को भी यूटिलाइज किया, इवन डीडीए, एनडीएमसी, ड्यूसिप सबने अपनी लैंड दी। और इसी तरीके से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हमने लैंड ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कर चुके हैं। एजेंसी से वो जमीन लेना, किसके जिम्मे क्या काम होगा, एवरीथिंग इज प्लान्ड। और कहीं पे भी एटलीस्ट लैंड की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और ये सारा काम कोई एक दिन में नहीं हुआ है, एक साल से इस पॉलिसी पे काम किया जा रहा है। डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यहां तक कि जीरो से लेकर के एंड पॉइंट तक, ए टू लेकर जेड तक, सारे के सारे कामों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जहां हमने अपनी पॉलिसी में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा तो वहां हम उस बैटरी के डिस्पोजल की भी बात कर रहे हैं, ई वेस्ट की भी बात कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर हमको ई वेस्ट डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, उसके लिए भी आज से काम हो चुका है।
0: जी जी, पूरी पॉलिसी में करीब 7,000 करोड़ की बात हुई है, जो आप एक तरह से वेवर दे रही हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो उसमें 8,000 करोड़ और हैं। टोटल 15,000 करोड़ की ये स्कीम है। इसमें से आप क्या करेंगी कि ये टू वी व्हीकल्स जो हैं, जो टू व्हीलर्स हैं बेसिकली ईवी व्हीकल्स, वो अफोर्डेबल हो जाएं? क्योंकि अभी देखिए क्या हो रहा है, अडॉप्शन में आपको कहां दिक्कत आएगी कि जो टू व्हीलर चलाने वाले लोग हैं, वो जो एक आइस व्हीकल खरीदते हैं या वो पेट्रोल या डीजल लेते हैं, वो कम दाम पर आती है, आपकी ईवी जो है वो महंगी है। इसमें से क्या वो मैच कर पाएंगे? क्योंकि अडॉप्शन तो तभी होगा, आदमी खरीदेगा तभी जब उसे लगेगा कॉस्ट बेनिफिट मिल रहा है।
1: देखिए, एडॉप्शन जो है बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एडॉप्शन इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी आसानी से वो सब्सिडी का जो कैश बेनिफिट है वो कस्टमर तक पहुंच पाता है। और हमने अपनी इस पॉलिसी में खाली सब्सिडी नहीं दी, स्क्रैपिंग का भी इंसेंटिव दिया है। तो ये टू वे चीज है। और फिर जो इंसेंटिव है वो डीबीटी के माध्यम से कस्टमर को मिलने वाला है, वो भी टाइम बाउंड मैनर में। आपको अपनी आरसी लेने के 30 दिन के अंदर अप्लाई करना है और 60 दिन के अंदर आपको वो कैश जो डीबीटी पहुंच जाए, ये हम एंश्योर करने वाले। तो ये सारी की सारी चीजें जो इस ईवी पॉलिसी में लाई गई है वो एडॉप्शन के लिए बहुत ही परफेक्ट है, लोगों के लिए मोटिवेटिंग है कि आपको सब्सिडी भी मिल रही है, आपको स्क्रैपिंग वैल्यू भी मिल रही है। और जब एक एक व्हीकल पे, यानी टू व्हीलर का अगर मैं एग्जाम्पल लूं, तो 30,000 रूपये आपको सब्सिडी दे रहे हैं, जो कि पूरे देश में कहीं नहीं है इतना बड़ा अमाउंट सब्सिडी का। फिर स्क्रैपिंग पे हम 10,000 रूपये दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब रोड टैक्स माफ है, रजिस्ट्रेशन फी माफ है, आपको स्क्रैपिंग मिल रहा है, आपको सब्सिडी मिल रही है, तो हर कोई लेना चाहेगा। इस दिल्ली शहर के लिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है उतनी यहां की जनता की भी है। तो हम मैंडेट भी कर रहे हैं और मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो मैंडेट और मोटिवेशन दोनों इस पॉलिसी में, इसलिए मुझे लगता है कि अडॉप्शन में लोग जा रहे हैं और स्टेक होल्डर हमारे साथ खड़े हैं।
0: ओके, अगर हम लास्ट पोल्यूशन रिपोर्ट उठाएं, टेरी की रिपोर्ट ही ले लेते हैं, सरकार भी उसी को देखती है, उसके बाद से कोई कॉम्प्रिहेंसिव पोल्यूशन रिपोर्ट बनी भी नहीं है मेरे ख्याल से। उसमें अगर आप उस रिपोर्ट को देखें तो करीब 46% दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स से आता है, जिसको आपने इस पॉलिसी में काफी अच्छे तरीके से टैकल करा है। आपने काफी इंसेंटिव्स दिए हैं एंड देयर इज अ डेडलाइन कि अगले साल से, स्टार्टिंग जनवरी ऑफ 2027, there will be a phase out. नई थ्री व्हीलर्स नहीं रजिस्टर्ड होंगी, टू व्हीलर्स नहीं रजिस्टर्ड होंगे, वो सारे आपके आपने बताई है। लेकिन इसमें से 33% अभी भी जो पोल्यूशन आता है वो कमर्शियल ट्रक्स का है। उस पर आपकी ये पॉलिसी इतनी अग्रेसिव क्यों नहीं हो पाई?
1: दो कारण है इसमें। एक तो हमारी ये जो पॉलिसी है वो कॉमन मैन ओरिएंटेड है। उसमें जो बड़ा सेगमेंट, जैसा आपने टैरी की स्टडी पे बताया कि जो बड़ा सेगमेंट अगर हम पॉल्यूशन को समझें कि जो एमिशन फ्री की तरफ हमें जाना है, तो उसमें बड़ा सेगमेंट है टू व्हीलर का और थ्री व्हीलर का। उसके बाद में 46% आप ही ने बताया, और उसके बाद 33% है जो N2 हमारे ट्रक्स हैं। N2 ट्रक्स का 33% इन्वॉल्वमेंट हम मानते हैं, तो हमने उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि जो 1 जुलाई से 30 सितंबर जितने भी N2 ट्रक्स अपने आप को ईवी में कन्वर्ट करेंगे, उस अर्लियर जो पहले के शुरू के 1,000 ट्रक्स को हम दिल्ली में 24 आवर्स का जो नो एंट्री जोन था उसमें अलाउ करेंगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि स्टेक होल्डर ने भी माना और वो इस बात पे राजी हुए कि हाँ ये हमारे लिए बेनिफिट है। सेकेंडली, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी इसमें बहुत सारे रिलीफ दिए जा रहे हैं जो दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए है कि ये N2 व्हीकल्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से 8% OEMs के माध्यम से डिस्काउंट दिया जा रहा है और 5% जो है उनको इंटरेस्ट में वेवर दिया जा रहा है ताकि ये जितने लोग भी N2 ट्रक्स के मालिक हैं उनको ये बेनिफिट मिले और वो भी ईवी पे आए। तो हमने पूरी तरीके से हर सेगमेंट को देखा है और प्रायोरिटी वाइज देखा है कि टू व्हीलर थ्री व्हीलर को हमको कितना वेटेज देना है, हमको मिडिल क्लास मैन को कितना देना है जो कि अपना सिंपल कार चला रहा है, और N2 ट्रक्स के लिए कितना देना है। तो हर व्यक्ति का इसमें ध्यान रखा गया है, हर सेगमेंट को केटर किया गया है ताकि दिल्ली को एक्चुअली पॉल्यूशन फ्री करना है।
0: जी, मैं N2 के लिए जस्ट क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि ऑडियंस को शायद समझ में आया। N2 आपके N1 हो गई आपके, वो छोटा हाथी जिसे बहुत बोला जाता है कम्युनिटी दिल्ली में, और N2 आपकी हो गई जो बड़ी कार्गो ट्रक
1: बड़ी होती है जो 3.5 टन से 12 टन तक का वेट लेकर के चलते हैं, दैट इज N2।
0: जी, बट मैम ये बात आप और हम दोनों जानते हैं कि जितनी हमारी दिल्ली में गार्बेज कलेक्शन ट्रक्स हैं, जो पुरानी ड्रग्स हैं, जो चाहे दिल्ली पुलिस यूज कर रही हो, जो पुरानी MCD की ट्रक्स हैं, जो बाकी वाटर स्प्रिंग एक्सेट्रा के लिए भी जो यूज होती है, असली पोल्यूशन तो इतनी पुरानी है वो उन्हीं से निकलता है। उस पर आपको नहीं लगता है कुछ और देना चाहिए था?
1: आपको ये जानकर के खुशी होगी और दिल्ली की जनता को भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये पॉलिसी केवल पब्लिक के लिए नहीं है, ये केवल प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए नहीं है, सरकार ने भी पूरी तरीके से इसको फॉलो करने के लिए हर चीज को अडॉप्ट किया है। हमने दिल्ली में जो मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए MRS मशीनें खरीदने के लिए जो टेंडर लगाए वो भी दैट इज ओनली फॉर ईवी व्हीकल, हम ईवी ही ले रहे हैं। हमने अपने मैंडेट में ये भी रखा है दिल्ली सरकार भी जो भी नए व्हीकल जो है परचेज करेगी या लीज करेगी वो सब ईवी होने चाहिए। आज की डेट में हमारे वाटर स्प्रिंकलर हो, हमारी MRS मशीनें हो या जो भी अदर व्हीकल्स हैं उन सबको सरकार भी ईवी की ओर जा रही है, अपने प्राइवेट व्हीकल भी हम लोग ईवी खरीद रहे हैं। तो कहीं से कहीं तक भी 100% और हम सब मिलकर के वो प्राइवेट स्कूल्स हो, वो हमारे ट्रक्स हो, टू व्हीलर्स हो, थ्री व्हीलर्स हो, गाड़ी हो, सब ने मिलकर के जब ये ठान लिया है कि दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करना है तो उसमें दिल्ली सरकार भी एक बड़ी यूनिट है और हम अपने सारे व्हीकल्स को ईवी की ओर लेके जा रहे हैं।
0: ग्रिड इतना पावरफुल है कि इतना चार्जिंग प्रोवाइड कर पाएगा हमारा?
1: ये भी एक और डायमेंशन है जिसमें कि पूरी तरीके से हमारे ग्रिड्स, हमारे सब स्टेशंस को मजबूत किया जा रहा है। उसका भी लॉन्ग टर्म प्लान हमने बनाया है कि पीरियोडिकली हम उस पर कितना खर्च करने वाले हैं, अपने सब स्टेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी नो डाउट। आज यदि हम 9000 मेगावाट पे खड़े हैं तो हमें ये डिमांड लगातार बढ़ेगी, तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है उसको हम कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को कहीं पे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये सारे डिपार्टमेंट पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं और उसको काम करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है।
0: आपने कहा सारे डिपार्टमेंट साथ में हैं, मैं आपकी पूरी टीम से बात कर रही थी इस इंटरव्यू के रिसर्च के लिए और हमें पता चला कि एक ईवी सेल बनाया गया 1 साल पहले जिसमें सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंक्लूड करा गया, OEMs को इंक्लूड करा गया, स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया, आई एम टोल्ड नेशनल सोलर अलायंस वगैरह भी गई, आपकी टीम लंदन, नॉर्वे, चाइना, काफी सारे उन्होंने मॉडल्स पढ़े, तो कोऑर्डिनेशन इंटरनल दिल्ली सरकार का इसमें काफी अच्छा दिख रहा है, पॉलिसी में दिख रहा है। पर असल कोऑर्डिनेशन जो आपको चाहिए ईवी के लिए और ईवी पॉलिसी लाने के लिए या प्रदूषण कम करने के लिए, वो सिर्फ दिल्ली का नहीं है, वो आपकी नेबरिंग स्टेट्स का भी है, वो कोऑर्डिनेशन आप कैसे लाएंगे?
1: ऑफकोर्स दिल्ली NCR पूरा इसमें इन्वॉल्व है। दिल्ली के पॉल्यूशन केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, आज हमें हमारे बॉर्डर एरिया, हमारा NCR एरिया, हर जगह से इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत थी, जिसको केवल दिल्ली नहीं, मुझे इस बात की खुशी है ये बताते हुए कि चाहे वो हमारी नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है उसने हमारी पूरी मदद करी, इसमें हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी मदद करी, CAQM ने, और
0: करें थोड़े बताएं।
1: हर राज्य जो एनसीआर में हमारे ये जुड़े हैं इनको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आने के लिए, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपनी योजना हमको दी जिसमें कि ओल्ड बसेस को ट्रक्स को ईवी पे लेके जाने के लिए उन्होंने एनसीआर के हर जिले को मदद करने की बात कही, और उसमें जो 8% सब्सिडी की मैंने बात कही या उसमें लोन के ऊपर जो रिबेट है 5% का, वो दिल्ली एनसीआर के हर जिले को केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है। और दिल्ली की जब ये ईवी पॉलिसी लागू होने के बाद हमारी यही ईवी पॉलिसी को बाकी राज्य भी फॉलो करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और केंद्र इसमें इनिशिएटिव ले रहा है, सीएक्यूएम इसमें इनिशिएटिव ले रही है, हर व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पे आकर किसकी चिंता कर रहा है। मुझे लगता है कि ये विषय सिर्फ दिल्ली का नहीं है, ये देश की राजधानी का विषय है, और इसलिए हर सरकार विशेष रूप से केंद्र सरकार इसमें जुड़ी है और उनका पूरा बैकअप हमें मिल रहा है, पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है।
0: आपकी बात हो पाई है बाकी मुख्यमंत्रियों से इसके बारे में?
1: हम कई बार एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। मैंने बताया कि नॉर्दर्न जोन की जब काउंसिल का मीटिंग था उसमें भी हरियाणा सीएम, यूपी के रिप्रेजेंटेटिव, राजस्थान के रिप्रेजेंटेटिव, हम लोगों ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बैठ करके इन सभी समस्याओं को समझा। और इसीलिए जब हमने दिल्ली का अपना विंटर एक्शन प्लान अनाउंस किया है तो हमने ये पूरी तरीके से बता दिया कि 1 नवंबर से लेकर फरवरी तक हमारी टेरिटरी में यानी दिल्ली राज्य में BS6 के नीचे के व्हीकल जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो नहीं आ पाएंगे, ये सबको कम्युनिकेट कर दिया गया है। तो बाकी के राज्य भी अकॉर्डिंगली प्लान कर रहे हैं, उसके अनुसार अपना काम कर रहे हैं। तो ये अच्छा है कि जब एक माइंडसेट की और एक नेतृत्व की सरकारें होती हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली एनसीआर देश की राजधानी आगे बढ़ रही है और अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए पूरी तरीके से मजबूत है।
0: जी, आपने विंटर पॉलिसी की बात करी तो उस पर आ जाते हैं। आपने एक विंटर पॉलिसी निकाली है जिसमें अब मैंडेटेड रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। अभी तक ही ग्रैप पर डिपेंड करता था, जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा जाते थे तो वो पॉलिसीज लगती थी, जब नहीं थे तो वो रिस्ट्रिक्शंस हट जाते थे। तो क्या आप ये समझना चाहिए कि ये पॉलिसीज रहेंगी फ्रॉम November 1st टू February 28th और ग्रैप अब नहीं लगेगा?
1: देखिए, पिछले साल की वर्किंग में हम ये समझ पाए कि ये ग्रैप जो है कभी 2 दिन लग गया, 1 दिन छूट गया, फिर इस तरीके से लगातार दिल्ली के लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, ना काम हो पाता है ना ही पॉल्यूशन पे कोई इफेक्टिव रिजल्ट आता है। इस बार हमने बहुत ही टाइमली यानी कि जुलाई माह में ही विंटर एक्शन प्लान अनाउंस किया है जिसमें कि डेट वाइज हमने ये बताया है कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दिल्ली के लिए बता दिया गया है कि आपको PUC के बिना पेट्रोल नहीं मिलेगा, पूरे साल नहीं मिलेगा, उस टाइम पीरियड में भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको वर्क फ्रॉम होम की बात की गई है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में आप उस समय नहीं कर सकते आउटडोर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। आप
0: 10th of December से January 20th तक कोई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट बैन है,
1: कंप्लीट बैन होगा। और इसी तरीके से ग्रैब भी समझ लीजिए कि ये नोटिफाई हो गया है, इसके बाद अलग से कोई और सूचना आपके पास नहीं आएगी। उस दौरान जो भी एक्टिविटीज बैन थी वो आप नहीं कर पाएंगे,
0: पर बाकी के साल में जो ग्रैब की एक्टिविटीज है वो चलती रहेंगी,
1: वो एज इट इज
0: चलती रहेंगी। लेकिन मैम, हम क्योंकि ग्रैब की बात कर रहे हैं, आई हैव टू आस्क यू दिस। ग्रैब में प्रॉब्लम ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, राइट? आपके पास दिल्ली पुलिस नहीं है, वो जाके सड़कों पर गाड़ियों को नहीं रोक पाती हैं, आप कंस्ट्रक्शन पे बैन्स नहीं लगा पाते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट आते हैं, कैसे प्रिवेंट करेंगी?
1: देखिए, जब इतना बड़ा प्लान हम लेकर के आए हैं और इतनी सीरियसनेस हर लेवल पर है, दिल्ली सरकार के लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, तो हमने सारी एजेंसीज को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके उस तरीके से तैयारी शुरू की है। हमने अपनी एजेंसीज को स्ट्रेंथन किया है, हमने लोग रिक्रूट किए हैं, ऑफिसर्स रिक्रूट किए हैं जो कि इस पूरे के पूरे प्लान को ऑब्जर्व करेंगे, उस पर जो कार्रवाई करनी है उन सबको करेंगे। पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, हर व्यक्ति उसके ऊपर काम करेगा और पूरी सख्ती के साथ में हम जितनी भी नोटिफिकेशंस जारी हुई हैं उसको हम लागू करेंगे।
0: आप ऑप्टिमिस्टिक हो रही हैं, पर दिल्ली के लोग जुगाड़ू हैं। ऑड एंड इवन लगा था, सबने अपने घर में एक एक गाड़ियां रख ली। अब आपने ईवी करी है, सब बोलेंगे सेकंड कार ईवी कर लेते हैं, पहली कार तो अभी भी ईवी नहीं करेंगे। लोग कुछ ना कुछ तो पेज ढूंढ लेते हैं। देखिए दिल्ली के लोग अपना दिमाग खूब लगाते हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोऑर्डिनेशन कैसे होएगा। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम दैट यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर दिल्ली पुलिस, तो क्या बातचीत होती है बैक चैनल में, आप कैसे इंश्योर करेंगे इन्फोर्समेंट हो, क्योंकि उसके बिना ये पॉलिसी नहीं काम कर सकती।
1: हमने पीछे ही अपनी डीपीसीसी को ऐसे वॉलंटियर्स लगाए, ऐसे हमने लोग अडॉप्ट किए वहां पर, जो कि पूरी तरीके से वायुदूत का हमने उनको नाम दिया, जो इस काम को देखरेख करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया कि हमारी सारी एजेंसीज इसमें लगने वाली हैं, और हर तरीके से, चाहे हमारा पीडब्ल्यूडी हो, चाहे हमारा एनवायरमेंट विभाग है, इस काम को करने वाले हैं, और पुलिस हो, ट्रैफिक हो, हर एजेंसी को हमने इस कॉमन एजेंडा पे लेके आए हैं, सबको इसे फॉलो करना होगा। और दिल्ली का पोल्यूशन केवल सरकार की प्रॉब्लम नहीं है, जनता की भी तो प्रॉब्लम है। आपने कहा कोई व्यक्ति दो गाड़ी ले सकता है, जरूर रख सकता है, पर एट ए लार्ज हमने जो ईवी पॉलिसी दिल्ली में लॉन्च की है वो उस मध्यम वर्गीय लोगों के लिए की है जो टू व्हीलर पे चलता है, जो 30 लाख से नीचे की गाड़ी लेके, एक सिंगल गाड़ी ही उसका अपना जिंदगी भर की कमाई होती है जिसको वो लेके चलता है। हो सकता है घर में 4 गाड़ी हो सकता है किसी के लिए ईवी की ऑप्शन एक सेकेंडरी ऑप्शन हो सकती है, जरूर हो सकती है, हर वर्ग का व्यक्ति यहां रहता है, परंतु एट ए लार्ज हमें लोगों को उस तरफ मोटिवेट करना है, उसी के लिए हम मैंडेट भी लाए हैं और वही हमारा प्रयास भी है। और व्यक्ति प्रयास करते हुए इसको बेहतर, खूब से बेहतर की ओर लेके जाने का हमारा निश्चय है और वो हम कर रहे हैं। हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीतियां भी स्पष्ट है।
0: आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो सिर्फ विंटर की प्रॉब्लम नहीं है, वो साल भर की प्रॉब्लम है। मैं उसको एक स्टेप आगे लेकर जाऊंगी, मैं कहूंगी पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे भारत की प्रॉब्लम है। जब नेशनल लेवल पर ही डिस्कशंस होते हैं, दिल्ली ज्योग्राफिकली ऐसे प्लेस्ड है, एक बेसिन बना हुआ है कि हमें ज्यादा वो फेस करना पड़ता है। अगर आप नोटिस करें तो देश भर की सारी मेट्रोज उतनी ही चोक होती हैं, दिल्ली ज्यादा चोक होती है। नेशनल लेवल पर क्या ये बात हो पा रही है, क्या आप ये लेकर गई हैं सेंटर, एंड वहां पर क्या डिस्कशन हो रहा है इस मामले में, कि क्योंकि अगर सीरियसली हमें दिल्ली को क्लीन करना है, हवा को क्लीन करना है, तो एक कोऑर्डिनेटेड नेशन वाइड एफर्ट लगेगा। क्या ये अंडरस्टैंडिंग है सरकार के पास? अभी
1: ये अंडरस्टैंडिंग है, तभी तो मैंने बताया कि ये इतने राज्य एक प्लेटफॉर्म पर आकर के काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और देखिए दिल्ली कैसे इस एक साल में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी है। आज हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फ्लीट है वो 100% ईवी की ओर जा रही है। आज 4,500 बसेस हमारी ईवी हैं, जो पूरे देश में किसी भी राज्य से ज्यादा हैं। आज हमारे यहाँ मेट्रो की जो नेटवर्किंग है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। आज ईवी पॉलिसी पूरे देश में सबसे मजबूत ईवी पॉलिसी हम लेकर के आए हैं। तो ये सारी चीजें जो इस तरफ हम बढ़ रहे हैं वो दिल्ली शहर को बेहतर करने के लिए, देश की राजधानी को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें केंद्र का, इसमें हमारे पड़ोस के राज्यों का हमारे साथ पूरा सपोर्ट है, क्योंकि केंद्र भी ये सोचता है कि देश की राजधानी में ये पॉल्यूशन कम होना चाहिए, और इसीलिए एनसीआर को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके कॉमन पॉलिसी के माध्यम से हम चीजों को ठीक करें। और मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए हमें सपोर्ट किया, हमारे साथ काम किया, और दिल्ली राज्य मजबूती से इसमें आगे बढ़ रहा है।
0: मैम, आई लव दैट यू आंसर ऑल क्वेश्चंस विद अ स्माइल ऑन योर फेस। आप ऑप्टिमिस्टिक बहुत हैं इसके बारे में, तो एक ऑप्टिमिज्म ही नंबर मुझे दे दीजिए कि लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में आपके हिसाब से आफ्टर ईवी पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड, हम 27 का नंबर लेकर चलते हैं जनवरी, हाउ मच ऑफ पोल्यूशन विल कम डाउन?
1: आप ये देखिए, परसेंटेज में या टाइम में अगर हम पोल्यूशन को बांधेंगे तो मैं यही कहूंगी कि पोल्यूशन तो भाई बांधने वाली चीजों में तो नहीं है। इस ईवी पॉलिसी के साथ और ईवी पॉलिसी के अलावा भी जो मेजर्स हम लोग कर रहे हैं, हम 70 लाख पेड़ पौधे इस एक साल में लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ईवी पे लेकर के जा रहे हैं, हमने डस्ट मिटिगेशन पे बड़ा काम किया है, और इस सब चीजों को जोड़ते हुए, जब सारी चीजें अलग अलग डायमेंशन में काम करते हुए भी हम जब एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी तादाद में जनता ईवी को अडॉप्ट करना शुरू करेगी उतना ही धीरे धीरे करके बाकी सारे एफर्ट्स करते हुए हम पॉल्यूशन को कम करते हुए जाएंगे। आज पूरी तरीके से दिल्ली हर सेगमेंट पे काम कर रही है, हर सेक्टर पे काम कर रही है।
0: आपके दिमाग में कि इतना परसेंटेज होगा, आपने कैलकुलेशन करा होगा,
1: जब पॉल्यूशन
0: आपके दिमाग में होगा कि 29 के बाद आप देखेंगे डिप होना शुरू हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा पर डिप होना शुरू हो जाएगा।
1: क्या आप किसी भी एक दिन में आप ये बता सकती हैं कि पॉल्यूशन कितनी मात्रा में आपके पास आ जाएगा, किस दिन कितना होगा? क्या इस सवाल को आप बांध सकती हैं, आप मुझे बता सकती हैं कि इतना पॉल्यूशन होगा? आप कहेंगी इतना इस दिन होगा तो मैं कहूंगी इतना इस दिन कम हो जाएगा।
0: नहीं, पर आपके दिमाग में एक गोल होगा ना कि इस साल तक मेरे फर्स्ट टेन्योर, ये बता दीजिए, चलिए रेखा गुप्ता का फर्स्ट टर्म एज चीफ मिनिस्टर एंड होते होते
1: ये सवाल आपने मुझसे पहले भी पूछा था, जब आप मुझे समय में बांधना चाहती थी तब भी मैंने कहा था कि बोलूंगी कम और काम ज्यादा करके दिखाऊंगी। मैं आज भी कह रही हूं कि मुझे वायदे बड़े नहीं करने, काम ज्यादा करना है। जिस एक साल की बात मैं कह रही हूं, जो आपने मेरे मुख्यमंत्री बनते ही मुझसे प्रश्न किए थे, आज यहां मैं बैठ करके आपको उन सारे सवालों का जवाब दे रही हूं कि मैंने क्या क्या किया। मेरे हाथ में अपना काम करना है, दिल्ली को बेटर फ्रेमवर्क में लेके आना है, उन पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूशन को करना है, मेरा दायित्व है। उसके बाद में रिजल्ट आना जनता पे, लोगों की इन्वॉल्वमेंट पे और नेचर पे डिपेंड करता है। पर एक भी सेक्टर छूटा नहीं है जिसपे हम काम कर रहे हैं। हमने कूड़े के पहाड़ कम किए, हमने वाटर बॉडी को रिवाइव किया, हमने वॉल टू वॉल रोड्स बनाकर डस्ट मिटिगेशन किया, हमने प्लांटेशन के साथ में ग्रीन कवर बढ़ाया, हमने फॉरेस्ट नोटिफाई किए, हर एक सेगमेंट पे काम हो रहा है। तो दिल्ली आगे बढ़ रही है, दिल्ली पॉल्यूशन कम करने की दिशा में रोज एक कदम आगे बढ़ाती है।
0: और मैंने इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ द इंटायर इंटरव्यू में मैंने आपसे बोला था कि मैं ये बेबाक बोल सकती हूं दैट इट्स अ गुड पॉलिसी इफ इम्प्लीमेंटेड वेल। तो मैं यही जानना चाह रही हूं कि इससे पहले भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन कॉन्क्रीट एक्शन तो तभी माना जाएगा जब पोल्यूशन कम होगा, आई एम श्योर। ये सब
1: आप
0: करने
1: भी
0: के
1: यही है, मैं भी यही हूं, हम लोग देखते हैं अगर कम होता है वो भी समझ में आएगा और कहां कमी रहती है तो उसके आगे बढ़ेंगे। आज जितना हम कर रहे हैं क्या पिछली किसी सरकार ने इतना किया? ऑड इवन, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, इंजन ऑफ, इसके अलावा क्या किया पिछली सरकारों ने? ईवी पॉलिसी लेकर के आए पर उसकी सब्सिडी नहीं दी, उस सब्सिडी को भी हमारी सरकार ने आने के बाद पे किया है। अगर हम चाहते तो वो पेमेंट ना करते पिछली सरकार के टाइम की, पर जनहित में 45 करोड़ रुपए वर्तमान की सरकार ने पिछली सरकार की लायबिलिटी को पे किया। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में इस शहर को बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि दिल्ली की जनता जो चाहती है हम वो काम कर रहे हैं। आज से पहले कब दिल्ली में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन थे? आज दिल्ली में 3 नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन बन रहे हैं, बनके पूरा भी हो गया एक स्टेशन। तो आज तक तो कमर्शियल व्हीकल ऐसे ही चल रहे थे, आज उनको हम टेस्टिंग के प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आज पूरी तरीके से एमिशन फ्री व्हीकल्स की ओर हम बढ़ रहे हैं, आज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हम ईवी पे लेकर के आए हैं। आज दिल्ली जिस ओर जा रही है, सच में जो लोग चाहते थे कि देश की राजधानी कैसी हो, आज एक्चुअल में ये एफर्ट हो रहे हैं।
0: आई अग्री विद यू मैम, आई अग्री विद यू ऑन वन थिंग कि आप इस समय बहुत ही यूनिक टाइम पे चीफ मिनिस्टर बनी है। दिल्ली सरकार बीजेपी की है, नेबरिंग स्टेट्स बीजेपी के हैं, एलजी आपका साथ देते हैं, सेंटर बीजेपी का है। यू हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रियली चेंज द फेस ऑफ दिल्ली, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर टॉप 3 प्रायोरिटीज, थिंग्स दैट यू वांट टू लीव एज रेखा गुप्ताज लेगेसी, कि ये 3 चीजें आपने बदली अपने समय पर जो आप करना चाहती हैं पर्सनली।
1: मैं दिल्ली की जनता के लिए चाहती हूं कि दिल्ली शहर में वेस्ट मैनेजमेंट
0: नंबर 1
1: प्रॉपरली होना चाहिए, जो कि आज तक नहीं था। आज दिल्ली शहर में यदि 14,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज जनरेट हो रहा है तो उसका डिस्पोजल केवल 6,000 मीट्रिक टन हो रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट को पूरी तरीके से इफेक्टिव करने के लिए मेरी पहली प्रायोरिटी है
0: जी।
1: सेकेंडली, हमारा जो सीवेज का सिस्टम है वो आज भी आधी दिल्ली में सीवर की लाइनें नहीं है, जो कि कारण बनती है यमुना की गंदगी का। पूरी तरीके से दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज लाइनों को लाइनअप करने की जरूरत है, पूरा का पूरा सिस्टम चैनलाइज करने की जरूरत है जिससे सीवेज प्रॉपरली डिस्पोज हो और यमुना गंदी ना हो, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, उसमें स्कूल आते हैं, उसमें हॉस्पिटल आते हैं, उसमें हमारे रोड्स आते हैं, ड्रेनेज आती है, इन सबको बेहतर करें तो मुझे लगता है कि दिल्ली वालों का दिल जरूर खुश होगा और दिल्ली के लिए मैं वो कर जाऊं जो आज तक नहीं हो पाया।
0: चलिए मैम, यू हैव अ वेरी एस्पिरेशनल एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। मैं यही कहूंगी कि दिल्ली वालों की तरफ से, मैं देखिए बाहर की हूं, मैं यहां पर काम करती हूं, मेरी कर्म भूमि है दिल्ली, मैं अपने बच्चे यहां पालती हूं, तो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी रियली वॉन्ट दिल्ली टू डू वेल। एज अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, आपको लगता है यहां की हवा ठीक नहीं है, यहां का पानी ठीक नहीं है, सड़क पर ट्रैफिक है, कई सारे लोग हैं, एक्सपैट्स भी हैं, जो अब दिल्ली में या भारतवर्ष के बारे में नहीं सोचते हैं उस तरह से, क्योंकि उनको लगता है यहां क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। उस एक चीज को अगर आप चेंज कर सकती हैं, सो आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट गेम चेंजर यू और एनीबडी एल्स कैन मेक। सो विद दैट आई लीव यू। एक आखिरी में आपसे क्या एक और चीज पूछ सकती हूं, मैंने ऑफ लेट नोटिस करा है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो गई हैं। या आई सी दैट यू आर मेकिंग रील्स, यू अप्रोच इट एंड यू हैव गॉट अ वेरी नाइस कैंडिड वे ऑफ स्पीकिंग टू पीपल। ये डिलिबरेट एफर्ट है टू रीच आउट, ये क्या सोच के कर रही हैं आप? मैंने आपसे पहले किसी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को ऐसे, दे आर गुड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स मोटिवेटेड यू।
1: देखिए, मैं दिल्ली की बेटी हूं और दिल्ली की प्रॉब्लम, दिल्ली के लिए सॉल्यूशन जानती हूं और मैं जनता के बीच में से आई हूं और जनता के बीच में रहना चाहती हूं। लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, मैं जनता की मुख्यमंत्री हूं तो लोगों के बीच में रह के उनको सुन के उनकी बातों को जान करके काम करना चाहती हूं। तकलीफ जरूर हो सकती है क्योंकि इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने किया नहीं कि आप लोगों के बीच में डायरेक्टली जाइए, उनसे पूछिए, बात कीजिए, कहीं किसी नाले की सफाई
0: सब करते थे, केजरीवाल ने भी करे,
1: किसी नाले की सफाई पे किस मुख्यमंत्री को आपने खड़े हुए देखा कि किसी सड़क के बनने पे किस मुख्यमंत्री को खड़े हुए देखा, रात को, दिन में, सुबह, यमुना की सफाई से लेकर के कूड़ा, हर चीज जनता से जुड़ा हुआ जितने भी विषय हैं मैं उसमें इन्वॉल्व हूं, मैं उसका सॉल्यूशन चाहती हूं। जनता के साथ मिलकर के दिल्ली को बेहतर करना है, दिल्ली को संवारना है।
0: ऑल राइट, रेखा गुप्ता, गुड लक, थैंक यू सो मच, लाइक आई सेड, एनी फॉर टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस डिस्पाइट नोइंग कि हम अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम कर रही हैं। आई लाइक दैट, थैंक यू सो मच, दिस इज अ गुड चैट,
1: थैंक यू सो मच।
0: All right, so we sat down with the Delhi Chief Minister. She had her own way of telling us whether or not the new EV policy will work. But the job of a journalist doesn't stop there and just listening to the minister. The job of a journalist goes into finding the truth on the ground, which is what we've done in part two of today's show. We've done a reality check to try and understand how exactly will the charging infrastructure in the national capital work. Now, there are two key figures to remember. If Delhi is to begin and move in its way to become fully EV in different phases, we need a massive functional and active charging ecosystem. Is that really the case? How exactly is it panning out as of now, before the policy? At least here is a report by my colleagues Sushant Mehra and Ashutosh Mishra.
2: Delhi wants to go electric. Backed by subsidies, tax exemptions, and a promise of over 30

0: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
1: continue to face political pressure to reach a peace deal,
0: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
2: Life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PPF samal lega. Aap apna dekh lo.
3: आज के अनिश्चितता भरे युग में भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी आज हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी। इससे हमारी गोवर्धन पहल और मजबूत होगी। इससे भारत के गांवों में सस्टेनेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और रूरल लाइवलीहुड को नई शक्ति मिलेगी। ऑयल शॉक जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आज हमने एनर्जी रेजिलियंस पर भी एक महत्वपूर्ण पहल की है। साथ ही बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी में हमारा सहयोग विश्व के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत और जापान मिलकर इकोनॉमिक सिक्योरिटी को शेयर्ड सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन को शेयर्ड अपॉर्चुनिटी के रूप में हम लेते हैं और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम काम करेंगे और उसको बदलेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने भारत जापान नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। इसे अब हम ऑटोमोटिव सेक्टर में हमारी सक्सेस स्टोरी को शिप बिल्डिंग, एविएशन और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में भी दोहराएंगे।

0: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है
2: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें
3: जिंदल स्टेनलेस इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील
4: No hacks, no drama. Just the real Korean ritual in every bottle of Aquajay. Infused with Jeju-grown botanicals and powered by K-Beauty Science. Aquajay, now in India.

0: लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में आपके हिसाब से आफ्टर ईवी पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड, हम 27 का नंबर लेकर चलते हैं जनवरी, हाउ मच ऑफ पोल्यूशन विल कम डाउन?
1: आप ये देखिए, परसेंटेज में या टाइम में अगर हम पोल्यूशन को बांधेंगे तो मैं यही कहूंगी कि पोल्यूशन तो भाई बंधने वाली चीजों में तो नहीं है। इस ईवी पॉलिसी के साथ और ईवी पॉलिसी के अलावा भी जो मेजर्स हम लोग कर रहे हैं, हम 70 लाख पेड़ पौधे इस एक साल में लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ईवी पे लेकर के जा रहे हैं, हमने डस्ट मिटिगेशन पे बड़ा काम किया है, और इस सब चीजों को जोड़ते हुए जब सारी चीजें अलग अलग डायमेंशन में काम करते हुए भी हम जब एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी तादाद में जनता ईवी को अडॉप्ट करना शुरू करेगी उतना ही धीरे धीरे करके बाकी सारे एफर्ट्स करते हुए हम पॉल्यूशन को कम करते हुए जाएंगे। आज पूरी तरीके से दिल्ली हर सेगमेंट पे काम कर रही है, हर सेक्टर पे काम कर रही है।
0: आपके दिमाग में कि इतना परसेंटेज होगा, आपने कैलकुलेशन करा होगा,
1: जब पॉल्यूशन
0: आपके दिमाग में होगा कि 29 के बाद आप देखेंगे डिप होना शुरू हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा पर डिप होना शुरू हो जाएगा।
1: क्या आप किसी भी एक दिन में आप ये बता सकती हैं कि पॉल्यूशन कितनी मात्रा में आपके पास आ जाएगा, किस दिन कितना होगा? क्या इस सवाल को आप बांध सकती हैं, आप मुझे बता सकती हैं कि इतना पॉल्यूशन होगा? आप कहेंगे इतना इस दिन होगा तो मैं कहूंगी इतना इस दिन कम हो जाएगा।
0: नहीं, पर आपके दिमाग में गोल होगा ना कि इस साल तक मेरे फर्स्ट टेन्योर, ये बता दीजिए, चलिए रेखा गुप्ता का फर्स्ट टर्म एज चीफ मिनिस्टर एंड होते होते,
1: ये सवाल आपने मुझसे पहले भी पूछा था जब आप मुझे समय में बांधना चाहती थी, तब भी मैंने कहा था कि बोलूंगी कम और काम ज्यादा करके दिखाऊंगी। मैं आज भी कह रही हूं कि मुझे वायदे बड़े नहीं करने, काम ज्यादा करना है। जिस एक साल की बात मैं कह रही हूं, जो आपने मेरे मुख्यमंत्री बनते ही मुझसे प्रश्न किए थे, आज यहां मैं बैठ करके आपको उन सारे सवालों का जवाब दे रही हूं कि मैंने क्या क्या किया। मेरे हाथ में अपना काम करना है, दिल्ली को बेटर फ्रेमवर्क में लेके आना है, उन पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूशन को करना है, मेरा दायित्व है। उसके बाद में रिजल्ट आना जनता पे, लोगों की इन्वॉल्वमेंट पे और नेचर पे डिपेंड करता है। पर एक भी सेक्टर छूटा नहीं है जिसपे हम काम कर रहे हैं। हमने कूड़े के पहाड़ कम किए, हमने वाटर बॉडी को रिवाइव किया, हमने वॉल टू वॉल रोड्स बनाकर डस्ट मिटिगेशन किया, हमने प्लांटेशन के साथ में ग्रीन कवर बढ़ाया, हमने फॉरेस्ट नोटिफाई किए, हर एक सेगमेंट पे काम हो रहा है। तो दिल्ली आगे बढ़ रही है, दिल्ली पॉल्यूशन कम करने की दिशा में रोज एक कदम आगे बढ़ाती है।
0: और मैंने इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ द इंटायर इंटरव्यू में मैंने आपसे बोला था कि मैं ये बेबाक बोल सकती हूं दैट इट्स अ गुड पॉलिसी इफ इम्प्लीमेंटेड वेल। तो मैं यही जानना चाह रही हूं कि इससे पहले भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन कॉन्क्रीट एक्शन तो तभी माना जाएगा जब पोल्यूशन कम होगा, आई एम श्योर। ये सब
1: तो
0: करने
1: आप
0: के
1: भी
0: बाद
1: यही हैं, मैं भी यही हूं, हम लोग देखते हैं, अगर कम होता है वो भी समझ में आएगा और कहां कमी रहती है तो उसके आगे बढ़ेंगे। आज जितना हम कर रहे हैं, क्या पिछली किसी सरकार ने इतना किया? ऑड इवन, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, इंजन ऑफ, इसके अलावा क्या किया पिछली सरकारों ने? ईवी पॉलिसी लेकर के आए पर उसकी सब्सिडी नहीं दी, उस सब्सिडी को भी हमारी सरकार ने आने के बाद पे किया है। अगर हम चाहते तो वो पेमेंट ना करते पिछली सरकार के टाइम की, पर जनहित में 45 करोड़ रुपए वर्तमान की सरकार ने पिछली सरकार की लायबिलिटी को पे किया। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में इस शहर को बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि दिल्ली की जनता जो चाहती है हम वो काम कर रहे हैं। आज से पहले कब दिल्ली में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस थे? आज दिल्ली में 3 नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस बन रहे हैं, बनके पूरा भी हो गया एक स्टेशन। तो आज तक तो कमर्शियल व्हीकल ऐसे ही चल रहे थे, आज उनको हम टेस्टिंग के प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आज पूरी तरीके से एमिशन फ्री व्हीकल्स की ओर हम बढ़ रहे हैं, आज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हम ईवी पे लेकर के आए हैं। आज दिल्ली जिस ओर जा रही है, सच में जो लोग चाहते थे कि देश की राजधानी कैसी हो, आज एक्चुअल में ये एफर्ट हो रहे हैं।
0: आई अग्री विद यू मैम, आई अग्री विद यू ऑन वन थिंग कि आप इस समय बहुत ही यूनिक टाइम पे चीफ मिनिस्टर बनी है। दिल्ली सरकार बीजेपी की है, नेबरिंग स्टेट्स बीजेपी के हैं, एलजी आपका साथ देते हैं, सेंटर बीजेपी का है। यू हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रियली चेंज द फेस ऑफ दिल्ली, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड what are your top three priorities, things that you want to leave as Rekha Gupta's legacy, ki ye teen cheezein aapne badli apne samay par jo aap karna chahti hain personally?
1: Main Delhi ki janta ke liye chahti hu ki Delhi shahar mein waste management
0: number one
1: प्रॉपरली होना चाहिए, जो कि आज तक नहीं था. आज दिल्ली शहर में यदि 14,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज जनरेट हो रहा है तो उसका डिस्पोजल केवल 6,000 मीट्रिक टन हो रहा है. वेस्ट मैनेजमेंट को पूरी तरीके से इफेक्टिव करने के लिए मेरी पहली प्रायोरिटी है
0: जी.
1: सेकेंडली, हमारा जो सीवेज का सिस्टम है वो आज भी आधी दिल्ली में सीवर की लाइनें नहीं है, जो कि कारण बनती है यमुना की गंदगी का. पूरी तरीके से दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज लाइनों को लाइनअप करने की जरूरत है. पूरा का पूरा सिस्टम चैनलाइज करने की जरूरत है, जिससे सीवेज प्रॉपरली डिस्पोज हो और यमुना गंदी ना हो. ये मेरी सेकेंड प्रायोरिटी. और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, उसमें स्कूल आते हैं, उसमें हॉस्पिटल आते हैं, उसमें हमारे रोड्स आते हैं, ड्रेनेज आती है, इन सबको बेहतर करें तो मुझे लगता है कि दिल्ली वालों का दिल जरूर खुश होगा और दिल्ली के लिए मैं वो कर जाऊं जो आज तक नहीं हो पाया.

0: Diehard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: यू
3: सोच बदलो और बैंक भी।
1: अल्फा,
4: यू सेड दे आर द बेस्ट।
5: आई डिड।
4: हाउ डू यू मेजर दैट?
5: प्रेशर
4: एंड
5: व्हाट दे डू व्हेन एवरीवन्स वेटिंग फॉर आंसर्स।
6: दे आर ट्रैवल्स अक्रॉस महाराष्ट्र।
7: द बेस्ट व्यू ऑफ एन इंडियन इलेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम द ग्राउंड।
8: इंडिया टुडे रिपोर्ट्स फ्रॉम द फ्रंट लाइन।
9: फर्स्ट पिक्चर्स ऑन योर स्क्रीन्स ऑफ द मीटिंग।
10: दे आर ऑलवेज फर्स्ट बिकॉज़ दे आर ऑलरेडी देयर।
11: दिस इज वेयर द एयरक्राफ्ट क्रैश्ड।
12: वी हैव रशिया, चाइना।
10: करेज,
13: नॉन नेगोशिएबल।
10: ट्रस्ट।
14: हेलो एंड वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ डेमोक्रेटिक न्यूज़ फ्रॉम आई एम जॉइंड
10: हियर बाय माय कॉलीग एवरी डे। Are these your operatives? No. These are India's operatives.
15: Alpha recognizes Alpha.
16: India's Alpha journalists on India's biggest Alpha news network.

भारतीय सेना, जैसे कि आप सब वाकिफ हैं, एक कॉम्बैट रेडी और बैटल हार्डेंड फोर्स है और युद्ध क्षेत्र की हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार और सक्षम है। इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से सशक्त हो और मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: You are watching India Today.
2: हेलो एंड वेलकम टू द स्पेशल ब्रॉडकास्ट। पिछले कई महीनों और सालों में हम लगातार आपके पास खबर लेकर आ रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण कितना बढ़ गया है। हमने सक्सेसिव सरकारों में, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, लगातार सवाल उठाए। ऑडिन इवन चलता है कि नहीं चलता है, स्मॉग टावर काम करता है कि नहीं, आर्टिफिशियल रेन से कितना फर्क पड़ेगा, सब पर हमने काफी क्रिटिकल क्वेश्चन उठाए सरकार को। बट टूडे, टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, वी हैव अमंग्स अस एक ऐसी पॉलिसी जो एक बहुत पिविटल रोल प्ले करने वाली है फॉर दिल्ली फ्यूचर। दिल्ली के पास एक नई अब ईवी पॉलिसी है। ये पॉलिसी पहले भी थी, लेकिन इस बार जो उसके चेंजेस आए हैं वो अलग क्यों हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये सिर्फ इंसेंटिव्स नहीं देती, ये एक हार्ड डेडलाइन लगाती है कि कब आईस व्हीकल्स जो है, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स हैं, फेज आउट हो जाएंगे दिल्ली से। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि अगर एक बड़ा चेंज दिल्ली में आया था सीएनजी पॉलिसी के चक्कर में, सीएनजी पॉलिसी के थ्रू जो शीला दीक्षित लेकर आई थी, तो ईवी पॉलिसी उससे ज्यादा या डेफिनेटली उससे कम इम्पैक्ट नहीं लाने वाली है। और वो लेकर आई हैं रेखा गुप्ता, जो हमारे साथ आज बैठी हुई है। वेलकम टू द प्रोग्राम मैम।
3: थैंक यू सो मच।
2: I have to say this out right in the beginning कि हमने साल भर आपसे बहुत क्रिटिकल सवाल पूछे। कोई और होता तो शायद इस इंटरव्यू के लिए आज अग्री नहीं करता, लेकिन आप यहां बैठी हैं, हमारे सवालों का जवाब देना चाहती हैं, सो kudos to you।
3: थैंक यू।
2: मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ईवी पॉलिसी के जो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, पॉलिसी का जो है इसके बारे में, इवन जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने काफी प्रेस करा है, काफी आपको लोगों ने बताया होगा, फीडबैक जो हमें भी मिल रहा है, हम जितने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं सबने काफी अच्छे से रिसीव करी है ये पॉलिसी। क्वेश्चन मार्क अब इम्प्लीमेंटेशन पर है, और मेरे रिसर्च के हिसाब से तीन चीजें हैं जिस पर ये इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है। नंबर एक, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किसे बढ़ाकर लाएंगी। नंबर दो, क्या आप ईवी जो व्हीकल्स हैं वो प्रोवाइड कर पाएंगी। और नंबर तीन, क्या आप ईवी व्हीकल्स वो जो हैं सही दाम पर, एक कंपेटिटिव प्राइस पर लोगों को दे पाएंगी। पहले वाले से शुरू करते हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या आपके एग्जीक्यूशन प्लान्स हैं?
3: ये बात बहुत सही है सोनल कि इस ईवी पॉलिसी की सक्सेस बहुत बड़ी मात्रा में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, और वी आर रेडी फॉर दैट। हमने पूरी तरीके से उसको प्लान किया, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर है उसको पार्टी बनाया। वैसे तो जनरली लोग अपने प्राइवेट व्हीकल के लिए घरों से ही चार्जिंग करता है मैक्सिमम, पर फिर भी पब्लिक प्लेसेस पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसमें हमने ओईएम्स को इन्वॉल्व किया है, उसमें हमने सोसाइटीज के लिए, उसमें सरकार के द्वारा डीटीएल, हर एक एजेंसी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में मदद करे, और उसके लिए बहुत ही ट्रांसपेरेंटली हमने सिंगल विंडो सिस्टम, ताकि लोग इसमें जो अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें ईवी के लिए, उसमें उनको कहीं पे भी हर्डल फेस ना करनी पड़े। सरकार उनको पूरी तरीके से फैसिलिटी देगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस देगी, मोटिवेट करेगी, सपोर्ट देगी। और अभी वर्तमान में 9000 पॉइंट 9000 चार्जिंग पॉइंट हमारे पास हैं, हमारा टारगेट 32000 तक जाने का है और उसके लिए लगातार हमने उसको नोडल एजेंसी डीटीएल को बनाया है, हम काम कर रहे हैं। ओईएम्स को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर किया है कि उनको भी अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, इवन सोसाइटीज को और कॉमन प्लेसेस पे भी हम इसको लगाने वाले हैं। तो मैं श्योर करती हूं दिल्ली की जनता को कि आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है।
4: जी, पॉलिसी में लिखा है कि 32,000 चार्जिंग पॉइंट्स बनेंगे मार्च 2030 तक। अब चार्जिंग पॉइंट्स के लिए आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देना नहीं होता है, आपको लैंड भी प्रोक्योर करनी होती है और दिल्ली बहुत ही पिक्यूलियर स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है। लैंड कई बार आपकी नहीं है, कभी एमसीडी की है, कभी किसी और अथॉरिटी की भी है, कभी एनडीएमसी की है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, आप कॉन्फिडेंट है कि ये नंबर रीच हो पाएगा?
3: मैं आपको इस बात को जरूर ध्यान दिलाऊंगी कि जब बात होती है कि डबल इंजन सरकार की, आज दिल्ली स्टेट में जो गवर्नमेंट है, सेंटर में, स्टेट में, एमसीडी में, सभी एजेंसीज एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं। और जब हमने आरोग्य मंदिर खोले तो हमने बाकी एजेंसीज की लैंड को भी यूटिलाइज किया, इवन डीडीए, एनडीएमसी, ड्यूसिप, सबने अपनी लैंड दी। और इसी तरीके से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हमने लैंड ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कर चुके हैं। एजेंसी से वो जमीन लेना, किसके जिम्मे क्या काम होगा, एवरीथिंग इज प्लान्ड और कहीं पे भी एटलीस्ट लैंड की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और ये सारा काम कोई एक दिन में नहीं हुआ है, एक साल से इस पॉलिसी पे काम किया जा रहा है, डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यहां तक कि जीरो से लेकर के एंड पॉइंट तक, ए टू लेकर जेड तक, सारे के सारे कामों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जहां हमने अपनी पॉलिसी में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा तो वहां हम उस बैटरी के डिस्पोजल की भी बात कर रहे हैं, ई वेस्ट की भी बात कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर हमको ई वेस्ट डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, उसके लिए भी आज से काम हो चुका है।
4: जी जी, पूरी पॉलिसी में करीब 7000 करोड़ की बात हुई है जो आप एक तरह से वेवर दे रही हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो उसमें 8000 करोड़ और हैं। टोटल 15000 करोड़ की ये स्कीम है। इसमें से आप क्या करेंगी कि ये टू व्हीलर्स हैं बेसिकली ईवी व्हीकल्स, वो अफोर्डेबल हो जाएं? क्योंकि अभी देखिए क्या हो रहा है, अडॉप्शन में आपको कहां दिक्कत आएगी कि जो टू व्हीलर चलाने वाले लोग हैं वो जो एक आइस व्हीकल खरीदते हैं या वो पेट्रोल या डीजल लेते हैं वो कम दाम पर आती है, आपकी ईवी जो है वो महंगी है। इसमें से क्या वो मैच कर पाएंगे? क्योंकि अडॉप्शन तो तभी होगा, आदमी खरीदेगा तभी जब उसे लगेगा कॉस्ट बेनिफिट मिल रहा है।
3: देखिए, अडॉप्शन जो है बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। एडॉप्शन इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी आसानी से वो सब्सिडी का जो कैश बेनिफिट है वो कस्टमर तक पहुंच पाता है। और हमने अपनी इस पॉलिसी में खाली सब्सिडी नहीं दी, स्क्रैपिंग का भी इंसेंटिव दिया है। तो ये टू वे चीज है। और फिर जो इंसेंटिव है वो डीबीटी के माध्यम से कस्टमर को मिलने वाला है, वो भी टाइम बाउंड मैनर में। आपको अपनी आरसी लेने के 30 दिन के अंदर अप्लाई करना है और 60 दिन के अंदर आपको वो कैश जो डीबीटी पहुंच जाए ये हम एंश्योर करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो इस ईवी पॉलिसी में लाई गई है वो एडॉप्शन के लिए बहुत ही परफेक्ट है, लोगों के लिए मोटिवेटिंग है कि आपको सब्सिडी भी मिल रही है, आपको स्क्रैपिंग वैल्यू भी मिल रही है। और जब एक एक व्हीकल पे, यानी टू व्हीलर का अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो 30000 रूपये आपको सब्सिडी दे रहे हैं जो कि पूरे देश में कहीं नहीं है, इतना बड़ा अमाउंट सब्सिडी का। फिर स्क्रैपिंग पे हम 10000 रूपये दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब रोड टैक्स माफ है, रजिस्ट्रेशन फी माफ है, आपको स्क्रैपिंग मिल रहा है, आपको सब्सिडी मिल रही है, तो हर कोई लेना चाहेगा। इस दिल्ली शहर के लिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है उतनी यहां की जनता की भी है। तो हम मैंडेट भी कर रहे हैं और मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो मैंडेट और मोटिवेशन दोनों इस पॉलिसी में, इसलिए मुझे लगता है कि अडॉप्शन में लोग जा रहे हैं और स्टेक होल्डर हमारे साथ खड़े हैं।
4: ओके, अगर हम लास्ट पोल्यूशन रिपोर्ट उठाएं, टेरी की रिपोर्ट ही ले लेते हैं, सरकार भी उसी को देखती है, उसके बाद से कोई कॉम्प्रिहेंसिव पोल्यूशन रिपोर्ट बनी भी नहीं है मेरे ख्याल से। उसमें अगर आप उस रिपोर्ट को देखें तो करीब 46% दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स से आता है, जिसको आपने इस पॉलिसी में काफी अच्छे तरीके से टैकल करा है। आपने काफी इंसेंटिव्स दिए हैं एंड देयर इज अ डेडलाइन कि अगले साल से, स्टार्टिंग जनवरी ऑफ 2027, there will be a phase out. नई थ्री व्हीलर्स नहीं रजिस्टर्ड होंगी, टू व्हीलर्स नहीं रजिस्टर्ड होंगे, वो सारे आपके आपने बताई है। लेकिन इसमें से 33% अभी भी जो पोल्यूशन आता है वो कमर्शियल ट्रक्स का है। उस पर आपकी ये पॉलिसी इतनी अग्रेसिव क्यों नहीं हो पाई?
3: दो कारण है इसमें. एक तो हमारी ये जो पॉलिसी है वो कॉमन मैन ओरिएंटेड है. उसमें जो बड़ा सेगमेंट, जैसा आपने टेरी की स्टडी पे बताया कि जो बड़ा सेगमेंट अगर हम पॉल्यूशन को समझें कि जो एमिशन फ्री की तरफ हमें जाना है, तो उसमें बड़ा सेगमेंट है टू व्हीलर का और थ्री व्हीलर का. उसके बाद में 46% आप ही ने बताया. और उसके बाद 33% है जो N2 हमारे ट्रक्स हैं. N2 ट्रक्स का 33% इन्वॉल्वमेंट हम मानते हैं, तो हमने उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि जो 1 जुलाई से 30 सितंबर जितने भी N2 ट्रक्स अपने आप को EV में कन्वर्ट करेंगे, उस अर्लियर जो पहले के शुरू के 1000 ट्रक्स को हम दिल्ली में 24 आवर्स का जो नो एंट्री जोन था उसमें अलाउ करेंगे. ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि स्टेक होल्डर ने भी माना और वो इस बात पे राजी हुए कि हाँ ये हमारे लिए बेनिफिट है. सेकेंडली, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी इसमें बहुत सारे रिलीफ दिए जा रहे हैं जो दिल्ली NCR के पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए है, कि ये N2 व्हीकल्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से 8% OEMs के माध्यम से डिस्काउंट दिया जा रहा है और 5% जो है उनको इंटरेस्ट में वेवर दिया जा रहा है, ताकि ये जितने लोग भी N2 ट्रक्स के मालिक हैं उनको ये बेनिफिट मिले और वो भी EV पे आए. तो हमने पूरी तरीके से हर सेगमेंट को देखा है और प्रायोरिटी वाइज देखा है कि टू व्हीलर थ्री व्हीलर को हमको कितना वेटेज देना है, हमको मिडिल क्लास मैन को कितना देना है जो कि अपना सिंपल कार चला रहा है, और N2 ट्रक्स के लिए कितना देना है. तो हर व्यक्ति का इसमें ध्यान रखा गया है, हर सेगमेंट को केटर किया गया है, ताकि दिल्ली को एक्चुअली पॉल्यूशन फ्री करना है.
5: जी, अब मैं N2 के लिए जस्ट क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि ऑडियंस को शायद समझ में नहीं आया. N2 आपके N1 हो गई आपके, वो छोटा हाथी जिसे बहुत बोला जाता है कॉमनली दिल्ली में, और N2 आपकी हो गई जो बड़ी कार्गो ट्रक
3: बड़ी होती है जो 3.5 टन से 12 टन तक का वेट लेकर के चलते हैं, दैट इज N2.
5: जी, बट मैम ये बात आप और हम दोनों जानते हैं कि जितनी हमारी दिल्ली में गार्बेज कलेक्शन ट्रक्स हैं, जो पुरानी ड्रग्स हैं, जो चाहे दिल्ली पुलिस यूज कर रही हो, जो पुरानी MCD की ट्रक्स हैं, जो बाकी वाटर स्प्रिंग एक्सेट्रा के लिए भी जो यूज होती है, असली पोल्यूशन तो इतनी पुरानी है वो उन्हीं से निकलता है. उस पर आपको नहीं लगता है कुछ और देना चाहिए था?
3: आपको ये जानकर के खुशी होगी और दिल्ली की जनता को भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये पॉलिसी केवल पब्लिक के लिए नहीं है, ये केवल प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए नहीं है, सरकार ने भी पूरी तरीके से इसको फॉलो करने के लिए हर चीज को अडॉप्ट किया है. हमने दिल्ली में जो मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए MRS मशीनें खरीदने के लिए जो टेंडर लगाए, वो भी दैट इज ओनली फॉर ईवी व्हीकल. हम ईवी ही ले रहे हैं. हमने अपने मैंडेट में ये भी रखा है, दिल्ली सरकार भी जो भी नए व्हीकल जो है परचेज करेगी या लीज करेगी वो सब ईवी होने चाहिए. आज की डेट में हमारे वाटर स्प्रिंकलर हो, हमारी MRS मशीनें हो, या जो भी अदर व्हीकल्स हैं, उन सबको सरकार भी ईवी की ओर जा रही है. अपने प्राइवेट व्हीकल भी हम लोग ईवी खरीद रहे हैं, तो कहीं से कहीं तक भी 100% और हम सब मिलकर के, वो प्राइवेट स्कूल्स हो, वो हमारे ट्रक्स हो, टू व्हीलर्स हो, थ्री व्हीलर्स हो, गाड़ी हो, सब ने मिलकर के जब ये ठान लिया है कि दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करना है, तो उसमें दिल्ली सरकार भी एक बड़ी यूनिट है और हम अपने सारे व्हीकल्स को ईवी की ओर लेके जा रहे हैं.
5: ग्रिड इतना पावरफुल है कि इतना चार्जिंग प्रोवाइड कर पाएगा हमारा?
3: ये भी एक और डायमेंशन है जिसमें कि पूरी तरीके से हमारे ग्रिड्स, हमारे सब स्टेशंस को मजबूत किया जा रहा है. उसका भी लॉन्ग टर्म प्लान हमने बनाया है कि पीरियोडिकली हम उस पर कितना खर्च करने वाले हैं, अपने सब स्टेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, नो डाउट. आज यदि हम 9000 मेगावाट पे खड़े हैं तो हमें ये डिमांड लगातार बढ़ेगी, तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है उसको हम कर रहे हैं. और दिल्ली की जनता को कहीं पे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ये सारे डिपार्टमेंट पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं और उसको काम करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है.
5: आपने कहा सारे डिपार्टमेंट साथ में हैं. मैं आपकी पूरी टीम से बात कर रही थी इस इंटरव्यू के रिसर्च के लिए, और हमें पता चला कि एक EV सेल बनाया गया 1 साल पहले,
4: जिसमें सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंक्लूड करा गया, ओईएम्स को इंक्लूड करा गया, स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया, आई एम टोल्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह भी गए, आपकी टीम लंदन, नॉर्वे, चाइना, काफी सारे उन्होंने मॉडल्स पढ़े, तो कोऑर्डिनेशन इंटरनल दिल्ली सरकार का इसमें काफी अच्छा दिख रहा है, पॉलिसी में दिख रहा है, पर असल कोऑर्डिनेशन जो आपको चाहिए ईवी के लिए और ईवी पॉलिसी लाने के लिए या प्रदूषण कम करने के लिए, वो सिर्फ दिल्ली का नहीं है, वो आपकी नेबरिंग स्टेट्स का भी है, वो कोऑर्डिनेशन आप कैसे लाएंगे?
3: ऑफकोर्स दिल्ली एनसीआर पूरा इसमें इन्वॉल्व है, दिल्ली के पॉल्यूशन केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, आज हमें हमारे बॉर्डर एरिया, हमारा एनसीआर एरिया, हर जगह से इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत थी, जिसको केवल दिल्ली नहीं, मुझे इस बात की खुशी है ये बताते हुए कि चाहे वो हमारी नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है, उसने हमारी पूरी मदद करी इसमें, हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी मदद करी, सीएक्यूएम ने, और
4: करी थोड़े बताइए,
3: हर राज्य जो एनसीआर में हमारे ये जुड़े हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आने के लिए, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपनी योजना हमको दी, जिसमें कि ओल्ड बसेस को, ट्रक्स को ईवी पे लेके जाने के लिए उन्होंने एनसीआर के हर जिले को मदद करने की बात कही, और उसमें जो 8% सब्सिडी की मैंने बात कही, या उसमें लोन के ऊपर जो रिबेट है 5% का, वो दिल्ली एनसीआर के हर जिले को केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है। और दिल्ली की जब ये ईवी पॉलिसी लागू होने के बाद हमारी यही ईवी पॉलिसी को बाकी राज्य भी फॉलो करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और केंद्र इसमें इनिशिएटिव ले रहा है, सीएक्यूएम इसमें इनिशिएटिव ले रही है, हर व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पे आकर किसकी चिंता कर रहा है। मुझे लगता है कि ये विषय सिर्फ दिल्ली का नहीं है, ये देश की राजधानी का विषय है, और इसलिए हर सरकार, विशेष रूप से केंद्र सरकार इसमें जुड़ी है, और उनका पूरा बैकअप हमें मिल रहा है, पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है।
4: आपकी बात हो पाई है बाकी मुख्यमंत्रियों से इसके बारे में?
3: हम कई बार एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, मैंने बताया कि नॉर्दर्न जोन की जब काउंसिल का मीटिंग था, उसमें भी हरियाणा सीएम, यूपी के रिप्रेजेंटेटिव, राजस्थान के रिप्रेजेंटेटिव, हम लोगों ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बैठ करके इन सभी समस्याओं को समझा, और इसीलिए जब हमने दिल्ली का अपना विंटर एक्शन प्लान अनाउंस किया है, तो हमने ये पूरी तरीके से बता दिया कि 1 नवंबर से लेकर फरवरी तक हमारी टेरिटरी में, यानी दिल्ली राज्य में, BS6 के नीचे के व्हीकल, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो नहीं आ पाएंगे, ये सबको कम्युनिकेट कर दिया गया है, तो बाकी के राज्य भी अकॉर्डिंगली प्लान कर रहे हैं, उसके अनुसार अपना काम कर रहे हैं, तो ये अच्छा है कि जब एक माइंडसेट की और एक नेतृत्व की सरकारें होती हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली एनसीआर, देश की राजधानी, आगे बढ़ रही है और अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए पूरी तरीके से मजबूत है।
4: जी, आपने विंटर पॉलिसी की बात करी तो उस पर आ जाते हैं। आपने एक विंटर पॉलिसी निकाली है जिसमें अब मैंडेटेड रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, अभी तक ही ग्रैप पर डिपेंड करता था, जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा जाते थे तो वो पॉलिसीज लगती थी, जब नहीं थे तो वो रिस्ट्रिक्शंस हट जाते थे, तो क्या आप ये समझना चाहिए कि ये पॉलिसीज रहेंगी फ्रॉम November 1st टू February 28th और ग्रैप अब नहीं लगेगा?
3: देखिए, पिछले साल की वर्किंग में हम ये समझ पाए कि ये ग्रैप जो है, कभी 2 दिन लग गया, 1 दिन छूट गया, फिर इस तरीके से लगातार दिल्ली के लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, ना काम हो पाता है, ना ही पॉल्यूशन पे कोई इफेक्टिव रिजल्ट आता है। इस बार हमने बहुत ही टाइमली, यानी कि जुलाई माह में ही विंटर एक्शन प्लान अनाउंस किया है, जिसमें कि डेट वाइज हमने ये बताया है कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दिल्ली के लिए बता दिया गया है कि आपको पीयूसी के बिना पेट्रोल नहीं मिलेगा, पूरे साल नहीं मिलेगा, उस टाइम पीरियड में भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको वर्क फ्रॉम होम की बात की गई है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में आप उस समय नहीं कर सकते आउटडोर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। आप
4: 10th of December से January 28th तक कोई कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट बैन है,
3: कंप्लीट बैन होगा। और इसी तरीके से ग्रैब भी समझ लीजिए कि ये नोटिफाई हो गया है, इसके बाद अलग से कोई और सूचना आपके पास नहीं आएगी। उस दौरान जो भी एक्टिविटीज बैन थी वो आप नहीं कर पाएंगे,
4: पर बाकी के साल में जो ग्रैब की एक्टिविटीज है वो चलती रहेंगी,
3: वो एज इट इज
4: चलती रहेंगी। लेकिन मैम, हम क्योंकि ग्रैप की बात कर रहे हैं, आई हैव टू आस्क यू दिस, ग्रैप में प्रॉब्लम ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, राइट? आपके पास दिल्ली पुलिस नहीं है, वो जाके सड़कें, आप सड़कों पर गाड़ियों को नहीं रोक पाती हैं, आप कंस्ट्रक्शन पे बैन्स नहीं लगा पाते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट आते हैं, कैसे प्रिवेंट करेंगी?
3: देखिए, जब इतना बड़ा प्लान हम लेकर के आए हैं और इतनी सीरियसनेस हर लेवल पर है, दिल्ली सरकार के लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, तो हमने सारी एजेंसीज को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके उस तरीके से तैयारी शुरू की है। हमने अपनी एजेंसीज को स्ट्रेंथन किया है, हमने लोग रिक्रूट किए हैं, ऑफिसर्स रिक्रूट किए हैं जो कि इस पूरे के पूरे प्लान को ऑब्जर्व करेंगे, उस पर जो कार्रवाई करनी है उन सबको करेंगे। पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, हर व्यक्ति उसके ऊपर काम करेगा और पूरी सख्ती के साथ में हम जितनी भी नोटिफिकेशंस जारी हुई हैं उसको हम लागू करेंगे।
5: आप ऑप्टिमिस्टिक हो रही हैं पर दिल्ली के लोग जुगाड़ू हैं। ऑड एंड इवन लगा था, सबने अपने घर में एक एक गाड़ियां रख ली। अब आपने ईवी करी है, सब बोलेंगे सेकंड कार ईवी कर लेते हैं, पहली कार तो अभी भी ईवी नहीं करेंगे। लोग कुछ ना कुछ तो पेच ढूंढ लेते हैं। देखिए दिल्ली के लोग अपना दिमाग खूब लगाते हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोऑर्डिनेशन कैसे होएगा। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम दैट यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर दिल्ली पुलिस, तो क्या बातचीत होती है बैक चैनल में? आप कैसे इंश्योर करेंगे इन्फोर्समेंट हो, क्योंकि उसके बिना ये पॉलिसी नहीं काम कर सकती।
3: हमने पीछे ही अपनी डीपीसीसी को ऐसे वॉलंटियर्स लगाए, ऐसे हमने लोग अडॉप्ट किए वहां पर, जो कि पूरी तरीके से वायुदूत का हमने उनको नाम दिया, जो इस काम को देखरेख करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया कि हमारी सारी एजेंसीज इसमें लगने वाली हैं और हर तरीके से, चाहे हमारा पीडब्ल्यूडी हो, चाहे हमारा एनवायरमेंट विभाग है, इस काम को करने वाले हैं। और पुलिस हो, ट्रैफिक हो, हर एजेंसी को हमने इस कॉमन एजेंडा पे लेके आए हैं, सबको इसे फॉलो करना होगा। और दिल्ली का पॉल्यूशन केवल सरकार की प्रॉब्लम नहीं है, जनता की भी तो प्रॉब्लम है। आपने कहा कोई व्यक्ति दो गाड़ी ले सकता है, जरूर रख सकता है, पर एट ए लार्ज हमने जो ईवी पॉलिसी दिल्ली में लॉन्च की है वो उस मध्यम वर्गीय लोगों के लिए की है जो टू व्हीलर पे चलता है, जो 30 लाख से नीचे की गाड़ी लेके, एक सिंगल गाड़ी ही उसका अपना जिंदगी भर की कमाई होती है जिसको वो लेके चलता है। हो सकता है घर में चार गाड़ी हो सकता है किसी के लिए ईवी की ऑप्शन एक सेकेंडरी ऑप्शन हो सकती है, जरूर हो सकती है, हर वर्ग का व्यक्ति यहां रहता है। परंतु एट ए लार्ज हमें लोगों को उस तरफ मोटिवेट करना है, उसी के लिए हम मैंडेट भी लाए हैं और वही हमारा प्रयास भी है। और व्यक्ति प्रयास करते हुए इसको बेहतर, खूब से बेहतर की ओर लेके जाने का हमारा निश्चय है और वो हम कर रहे हैं। हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीतियां भी स्पष्ट है।
5: आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो सिर्फ विंटर की प्रॉब्लम नहीं है, वो साल भर की प्रॉब्लम है। मैं उसको एक स्टेप आगे लेकर जाऊंगी, मैं कहूंगी पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे भारत की प्रॉब्लम है। जब नेशनल लेवल पर ही डिस्कशंस होते हैं, दिल्ली ज्योग्राफिकली ऐसे प्लेस्ड है, एक बेसिन बना हुआ है कि हमें ज्यादा वो फेस करना पड़ता है। अगर आप नोटिस करें तो देश भर की सारी मेट्रोज उतनी ही चौक होती हैं, दिल्ली ज्यादा चौक होती है। नेशनल लेवल पर क्या ये बात हो पा रही है? क्या आप ये लेकर गई हैं सेंटर, एंड वहां पर क्या डिस्कशन हो रहा है इस मामले में कि क्योंकि अगर सीरियसली हमें दिल्ली को क्लीन करना है, हवा को क्लीन करना है, तो एक कोऑर्डिनेटेड नेशन वाइड एफर्ट लगेगा। क्या ये अंडरस्टैंडिंग है सरकार के पास? अभी
3: ये अंडरस्टैंडिंग है, तभी तो मैंने बताया कि ये इतने राज्य एक प्लेटफॉर्म पर आकर के काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और देखिए दिल्ली कैसे इस एक साल में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी है। आज हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फ्लीट है वो 100% ईवी की ओर जा रही है। आज 4,500 बसेस हमारी ईवी हैं, जो पूरे देश में किसी भी राज्य से ज्यादा हैं। आज हमारे यहाँ मेट्रो की जो नेटवर्किंग है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। आज ईवी पॉलिसी पूरे देश में सबसे मजबूत ईवी पॉलिसी हम लेकर के आए हैं। तो ये सारी चीजें जो इस तरफ हम बढ़ रहे हैं वो दिल्ली शहर को बेहतर करने के लिए, देश की राजधानी को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें केंद्र का, इसमें हमारे पड़ोस के राज्यों का हमारे साथ पूरा सपोर्ट है, क्योंकि केंद्र भी ये सोचता है कि देश की राजधानी में ये पॉल्यूशन कम होना चाहिए। और इसीलिए एनसीआर को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके कॉमन पॉलिसी के माध्यम से हम चीजों को ठीक करें। और मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए हमें सपोर्ट किया, हमारे साथ काम किया और दिल्ली राज्य मजबूती से इसमें आगे बढ़ रहा है।
5: मैम, आई लव दैट यू आंसर ऑल क्वेश्चंस विद अ स्माइल ऑन योर फेस। आप ऑप्टिमिस्टिक बहुत हैं इसके बारे में, तो एक ऑप्टिमिज्म ही नंबर मुझे दे दीजिए कि लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में आपके हिसाब से आफ्टर ईवी पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड, हम 27 का नंबर लेकर चलते हैं जनवरी, हाउ मच ऑफ पोल्यूशन विल कम डाउन?
3: आप ये देखिए, परसेंटेज में या टाइम में अगर हम पॉल्यूशन को बांधेंगे तो मैं यही कहूंगी कि पॉल्यूशन तो भाई बांधने वाली चीजों में तो नहीं है। इस ईवी पॉलिसी के साथ और ईवी पॉलिसी के अलावा भी जो मेजर्स हम लोग कर रहे हैं, हम 70 लाख पेड़ पौधे इस एक साल में लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ईवी पे लेकर के जा रहे हैं, हमने डस्ट मिटिगेशन पे बड़ा काम किया है, और इस सब चीजों को जोड़ते हुए जब सारी चीजें अलग अलग डायमेंशन में काम करते हुए भी हम जब एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी तादाद में जनता ईवी को अडॉप्ट करना शुरू करेगी उतना ही धीरे धीरे करके बाकी सारे एफर्ट्स करते हुए हम पॉल्यूशन को कम करते हुए जाएंगे। आज पूरी तरीके से दिल्ली हर सेगमेंट पे काम कर रही है, हर सेक्टर पे काम कर रही है।
4: आपके दिमाग में कि इतना परसेंटेज होगा, कैलकुलेशन करा होगा,
3: जब पॉल्यूशन
4: आपके दिमाग में होगा कि 29 के बाद आप देखेंगे डिप होना शुरू हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा पर डिप होना शुरू हो जाएगा।
3: क्या आप किसी भी एक दिन में आप ये बता सकती हैं कि पॉल्यूशन कितनी मात्रा में आपके पास आ जाएगा, किस दिन कितना होगा? क्या इस सवाल को आप बांध सकती हैं, आप मुझे बता सकती हैं कि इतना पॉल्यूशन होगा? आप कहेंगे इतना इस दिन होगा, तो मैं कहूंगी इतना इस दिन कम हो जाएगा।
4: नहीं, पर आपके दिमाग में गोल होगा ना कि इस साल तक मेरे फर्स्ट टेन्योर, ये बता दीजिए, चलिए रेखा गुप्ता का फर्स्ट टर्म एज चीफ मिनिस्टर एंड होते होते
3: ये सवाल आपने मुझसे पहले भी पूछा था, जब आप मुझे समय में बांधना चाहती थी तब भी मैंने कहा था कि बोलूंगी कम और काम ज्यादा करके दिखाऊंगी। मैं आज भी कह रही हूं कि मुझे वायदे बड़े नहीं करने, काम ज्यादा करना है। जिस एक साल की बात मैं कह रही हूं, जो आपने मेरे मुख्यमंत्री बनते ही मुझसे प्रश्न किए थे, आज यहां मैं बैठ करके आपको उन सारे सवालों का जवाब दे रही हूं कि मैंने क्या क्या किया। मेरे हाथ में अपना काम करना है, दिल्ली को बेटर फ्रेमवर्क में लेके आना है, उन पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूशन को करना है, मेरा दायित्व है। उसके बाद में रिजल्ट आना जनता पे, लोगों की इन्वॉल्वमेंट पे और नेचर पे डिपेंड करता है। पर एक भी सेक्टर छूटा नहीं है जिसपे हम काम कर रहे हैं। हमने कूड़े के पहाड़ कम किए, हमने वाटर बॉडी को रिवाइव किया, हमने वॉल टू वॉल रोड्स बनाकर डस्ट मिटिगेशन किया, हमने प्लांटेशन के साथ में ग्रीन कवर बढ़ाया, हमने फॉरेस्ट नोटिफाई किए, हर एक सेगमेंट पे काम हो रहा है। तो दिल्ली आगे बढ़ रही है, दिल्ली पॉल्यूशन कम करने की दिशा में रोज एक कदम आगे बढ़ाती है।
4: और मैंने इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ द इंटायर इंटरव्यू में मैंने आपसे बोला था कि मैं ये बेबाक बोल सकती हूँ दैट इट्स अ गुड पॉलिसी इफ इम्प्लीमेंटेड वेल। तो मैं यही जानना चाह रही हूं कि इससे पहले भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन कॉन्क्रीट एक्शन तो तभी माना जाएगा जब पोल्यूशन कम होगा, आई एम श्योर। ये सब
3: तो आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, हम लोग देखते हैं अगर कम होता है वो भी समझ में आएगा, और कहां कमी रहती है तो उसके आगे बढ़ेंगे। आज जितना हम कर रहे हैं, क्या पिछली किसी सरकार ने इतना किया? ऑड इवन, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, इंजन ऑफ, इसके अलावा क्या किया पिछली सरकारों ने? ईवी पॉलिसी लेकर के आए पर उसकी सब्सिडी नहीं दी, उस सब्सिडी को भी हमारी सरकार ने आने के बाद पे किया है। अगर हम चाहते तो वो पेमेंट ना करते पिछली सरकार के टाइम की, पर जनहित में 45 करोड़ रुपए वर्तमान की सरकार ने पिछली सरकार की लायबिलिटी को पे किया। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में इस शहर को बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि दिल्ली की जनता जो चाहती है हम वो काम कर रहे हैं। आज से पहले कब दिल्ली में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस थे? आज दिल्ली में 3 नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस बन रहे हैं, बनके पूरा भी हो गया एक स्टेशन। तो आज तक तो कमर्शियल व्हीकल ऐसे ही चल रहे थे, आज उनको हम टेस्टिंग के प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आज पूरी तरीके से एमिशन फ्री व्हीकल्स की ओर हम बढ़ रहे हैं, आज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हम ईवी पे लेकर के आए हैं। आज दिल्ली जिस ओर जा रही है, सच में जो लोग चाहते थे कि देश की राजधानी कैसी हो, आज एक्चुअल में ये एफर्ट हो रहे हैं।
4: आई एग्री विद यू मैम, आई एग्री विद यू ऑन वन थिंग कि आप इस समय बहुत ही यूनिक टाइम पे चीफ मिनिस्टर बनी है। दिल्ली सरकार बीजेपी की है, नेबरिंग स्टेट्स बीजेपी के हैं, एलजी आपका साथ देते हैं, सेंटर बीजेपी का है। यू हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रियली चेंज द फेस ऑफ दिल्ली, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर टॉप 3 प्रायोरिटीज, थिंग्स दैट यू वांट टू लीव एज रेखा गुप्ताज लेगेसी, कि ये 3 चीजें आपने बदली अपने समय पर जो आप करना चाहती हैं पर्सनली।
3: मैं दिल्ली की जनता के लिए चाहती हूं कि दिल्ली शहर में वेस्ट मैनेजमेंट
4: नंबर वन
3: प्रॉपरली होना चाहिए, जो कि आज तक नहीं था. आज दिल्ली शहर में यदि 14,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज जनरेट हो रहा है तो उसका डिस्पोजल केवल 6,000 मीट्रिक टन हो रहा है. वेस्ट मैनेजमेंट को पूरी तरीके से इफेक्टिव करने के लिए मेरी पहली प्रायोरिटी है.
4: जी.
3: सेकेंडली, हमारा जो सीवेज का सिस्टम है वो आज भी आधी दिल्ली में सीवर की लाइनें नहीं है, जो कि कारण बनती है यमुना की गंदगी का. पूरी तरीके से दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज लाइनों को लाइनअप करने की जरूरत है. पूरा का पूरा सिस्टम चैनलाइज करने की जरूरत है जिससे सीवेज प्रॉपरली डिस्पोज हो और यमुना गंदी ना हो. ये मेरी सेकेंड प्रायोरिटी है. और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, उसमें स्कूल आते हैं, उसमें हॉस्पिटल आते हैं, उसमें हमारे रोड्स आते हैं, ड्रेनेज आती है, इन सबको बेहतर करें तो मुझे लगता है कि दिल्ली वालों का दिल जरूर खुश होगा और दिल्ली के लिए मैं वो कर जाऊं जो आज तक नहीं हो पाया.
4: चलिए मैम, यू हैव अ वेरी एस्पिरेशनल एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. मैं यही कहूंगी कि दिल्ली वालों की तरफ से, मैं देखिए बाहर की हूं, मैं यहां पर काम करती हूं, मेरी कर्म भूमि है दिल्ली, मैं अपने बच्चे यहां पालती हूं, तो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी रियली वॉन्ट दिल्ली टू डू वेल. एज अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, आपको लगता है यहां की हवा ठीक नहीं है, यहां का पानी ठीक नहीं है, सड़क पे ट्रैफिक है, कई सारे लोग हैं, एक्सपैट्स भी हैं, जो अब दिल्ली में या भारतवर्ष के बारे में नहीं सोचते हैं उस तरह से, क्योंकि उनको लगता है यहां क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है. उस एक चीज को अगर आप चेंज कर सकती हैं, सो आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट गेम चेंजर यू और एनीबडी एल्स कैन मेक. सो विद दैट आई लीव यू. एक आखिरी में आपसे क्या एक और चीज पूछ सकती हूं. मैंने ऑफ लेट नोटिस करा है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो गई हैं. या आई सी दैट यू आर मेकिंग रील्स, यू अप्रोच इट एंड यू गॉट अ वेरी नाइस कैंडिड वे ऑफ स्पीकिंग टू पीपल. ये डिलिबरेट एफर्ट है टू रीच आउट, ये क्या सोच के कर रही हैं आप? मैंने आपसे पहले किसी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को ऐसे, दे आर गुड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स मोटिवेटेड यू.
3: देखिए, मैं दिल्ली की बेटी हूं और दिल्ली की प्रॉब्लम, दिल्ली के लिए सॉल्यूशन जानती हूं और मैं जनता के बीच में से आई हूं और जनता के बीच में रहना चाहती हूं. लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, मैं जनता की मुख्यमंत्री हूं तो लोगों के बीच में रह के उनको सुन के उनकी बातों को जान करके काम करना चाहती हूं. तकलीफ जरूर हो सकती है क्योंकि इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने किया नहीं कि आप लोगों के बीच में डायरेक्टली जाइए, उनसे पूछिए, बात कीजिए, कहीं किसी नाले की सफाई
4: सब करते थे, केजरीवाल ने भी करे
3: किसी नाले की सफाई पे किस मुख्यमंत्री को आपने खड़े हुए देखा कि किसी सड़क के बनने पे किस मुख्यमंत्री को खड़े हुए देखा, रात को, दिन में, सुबह, यमुना की सफाई से लेकर के कूड़ा, हर चीज जनता से जुड़ा हुआ जितने भी विषय हैं मैं उसमें इन्वॉल्व हूं, मैं उसका सॉल्यूशन चाहती हूं. जनता के साथ मिलकर के दिल्ली को बेहतर करना है, दिल्ली को संवारना है.
4: ऑल राइट, रेखा गुप्ता, गुड लक, थैंक यू सो मच. लाइक आई सेड, एनी फॉर टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस डिस्पाइट नोइंग कि हम अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम कर रही हैं. आई लाइक दैट. थैंक यू सो मच. दिस इज अ गुड चैट.
3: थैंक यू सो मच.
1: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे.
6: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
7: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
6: Smartless.
8: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
6: Marketplace.
9: Big three on the program today, or... You know, the big three of them.
6: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
10: Today, Best Colleges Survey 2026. From colleges with exceptional placement records to top private medical and engineering institutes. Emerging campuses and value for money options. Discover the institutions shaping tomorrow's leaders. India Today, Best Colleges Survey 2026. Visit now. bestcolleges.indiatoday.in.

0: लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में आपके हिसाब से आफ्टर ईवी पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड, हम 27 का नंबर लेकर चलते हैं जनवरी, हाउ मच ऑफ पोल्यूशन विल कम डाउन?
1: आप ये देखिए, परसेंटेज में या टाइम में अगर हम पोल्यूशन को बांधेंगे तो मैं यही कहूंगी कि पोल्यूशन तो भाई बांधने वाली चीजों में तो नहीं है। इस ईवी पॉलिसी के साथ और ईवी पॉलिसी के अलावा भी जो मेजर्स हम लोग कर रहे हैं, हम 70 लाख पेड़ पौधे इस एक साल में लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ईवी पे लेकर के जा रहे हैं, हमने डस्ट मिटिगेशन पे बड़ा काम किया है, और इस सब चीजों को जोड़ते हुए जब सारी चीजें अलग अलग डायमेंशन में काम करते हुए भी हम जब एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी तादाद में जनता ईवी को अडॉप्ट करना शुरू करेगी उतना ही धीरे धीरे करके बाकी सारे एफर्ट्स करते हुए हम पॉल्यूशन को कम करते हुए जाएंगे। आज पूरी तरीके से दिल्ली हर सेगमेंट पे काम कर रही है, हर सेक्टर पे काम कर रही है।
0: आपके दिमाग में कि इतना परसेंटेज होगा, कैलकुलेशन करा होगा,
1: जब पॉल्यूशन
0: आपके दिमाग में होगा कि 29 के बाद आप देखेंगे डिप होना शुरू हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा पर डिप होना शुरू हो जाएगा।
1: क्या आप किसी भी एक दिन में आप ये बता सकती हैं कि पॉल्यूशन कितनी मात्रा में आपके पास आ जाएगा, किस दिन कितना होगा? क्या इस सवाल को आप बांध सकती हैं, आप मुझे बता सकती हैं कि इतना पोल्यूशन होगा? आप कहेंगे इतना इस दिन होगा, तो मैं कहूंगी इतना इस दिन कम हो जाएगा।
0: नहीं, पर आपके दिमाग में एक गोल होगा ना कि इस साल तक मेरे फर्स्ट टेन्योर, ये बता दीजिए, चलिए रेखा गुप्ता का फर्स्ट टर्म एज चीफ मिनिस्टर एंड होते होते
1: ये सवाल आपने मुझसे पहले भी पूछा था, जब आप मुझे समय में बांधना चाहती थी तब भी मैंने कहा था कि बोलूंगी कम और काम ज्यादा करके दिखाऊंगी। मैं आज भी कह रही हूं कि मुझे वायदे बड़े नहीं करने, काम ज्यादा करना है। जिस एक साल की बात मैं कह रही हूं, जो आपने मेरे मुख्यमंत्री बनते ही मुझसे प्रश्न किए थे, आज यहां मैं बैठ करके आपको उन सारे सवालों का जवाब दे रही हूं कि मैंने क्या क्या किया। मेरे हाथ में अपना काम करना है, दिल्ली को बेटर फ्रेमवर्क में लेके आना है, उन पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूशन को करना है, मेरा दायित्व है। उसके बाद में रिजल्ट आना जनता पे, लोगों की इन्वॉल्वमेंट पे और नेचर पे डिपेंड करता है। पर एक भी सेक्टर छूटा नहीं है जिसपे हम काम कर रहे हैं। हमने कूड़े के पहाड़ कम किए, हमने वाटर बॉडी को रिवाइव किया, हमने वॉल टू वॉल रोड्स बनाकर डस्ट मिटिगेशन किया, हमने प्लांटेशन के साथ में ग्रीन कवर बढ़ाया, हमने फॉरेस्ट नोटिफाई किए, हर एक सेगमेंट पे काम हो रहा है। तो दिल्ली आगे बढ़ रही है, दिल्ली पॉल्यूशन कम करने की दिशा में रोज एक कदम आगे बढ़ाती है।
0: और मैंने इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ द इंटायर इंटरव्यू में मैंने आपसे बोला था कि मैं ये बेबाक बोल सकती हूं दैट इट्स अ गुड पॉलिसी इफ इम्प्लीमेंटेड वेल। तो मैं यही जानना चाह रही हूं कि इससे पहले भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन कॉन्क्रीट एक्शन तो तभी माना जाएगा जब पोल्यूशन कम होगा, आई एम श्योर। ये सब
1: आप
0: करने
1: भी
0: के
1: यही है, मैं भी यही हूं, हम लोग देखते हैं अगर कम होता है वो भी समझ में आएगा, और कहां कमी रहती है तो उसके आगे बढ़ेंगे। आज जितना हम कर रहे हैं, क्या पिछली किसी सरकार ने इतना किया? ऑड इवन, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, इंजन ऑफ, इसके अलावा क्या किया पिछली सरकारों ने? ईवी पॉलिसी लेकर के आए पर उसकी सब्सिडी नहीं दी, उस सब्सिडी को भी हमारी सरकार ने आने के बाद पे किया है। अगर हम चाहते तो वो पेमेंट ना करते पिछली सरकार के टाइम की, पर जनहित में 45 करोड़ रुपए वर्तमान की सरकार ने पिछली सरकार की लायबिलिटी को पे किया। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में इस शहर को बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि दिल्ली की जनता जो चाहती है हम वो काम कर रहे हैं। आज से पहले कब दिल्ली में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस थे? आज दिल्ली में 3 नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस बन रहे हैं, बनके पूरा भी हो गया एक स्टेशन। तो आज तक तो कमर्शियल व्हीकल ऐसे ही चल रहे थे, आज उनको हम टेस्टिंग के प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आज पूरी तरीके से एमिशन फ्री व्हीकल्स की ओर हम बढ़ रहे हैं, आज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हम ईवी पे लेकर के आए हैं, आज दिल्ली जिस ओर जा रही है, सच में जो लोग चाहते थे कि देश की राजधानी कैसी हो, आज एक्चुअल में ये एफर्ट हो रहे हैं।
0: आई एग्री विद यू मैम, आई एग्री विद यू ऑन वन थिंग कि आप इस समय बहुत ही यूनिक टाइम पे चीफ मिनिस्टर बनी है। दिल्ली सरकार बीजेपी की है, नेबरिंग स्टेट्स बीजेपी के हैं, एलजी आपका साथ देते हैं, सेंटर बीजेपी का है। यू हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रियली चेंज द फेस ऑफ दिल्ली, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड What are your top three priorities? Things that you want to leave as Rekha Gupta's legacy? कि ये तीन चीजें आपने बदली अपने समय पर, जो आप करना चाहती हैं पर्सनली?
1: मैं दिल्ली की जनता के लिए चाहती हूं कि दिल्ली शहर में वेस्ट मैनेजमेंट
0: नंबर वन
1: प्रॉपरली होना चाहिए, जो कि आज तक नहीं था. आज दिल्ली शहर में यदि 14,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज जनरेट हो रहा है तो उसका डिस्पोजल केवल 6,000 मीट्रिक टन हो रहा है. वेस्ट मैनेजमेंट को पूरी तरीके से इफेक्टिव करने के लिए मेरी पहली प्रायोरिटी है
0: जी.
1: सेकेंडली, हमारा जो सीवेज का सिस्टम है वो आज भी आधी दिल्ली में सीवर की लाइनें नहीं है, जो कि कारण बनती है यमुना की गंदगी का. पूरी तरीके से दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज लाइनों को लाइनअप करने की जरूरत है. पूरा का पूरा सिस्टम चैनलाइज करने की जरूरत है, जिससे सीवेज प्रॉपरली डिस्पोज हो और यमुना गंदी ना हो. ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है. और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, उसमें स्कूल आते हैं, उसमें हॉस्पिटल आते हैं, उसमें हमारे रोड्स आते हैं, ड्रेनेज आती है, इन सबको बेहतर करें तो मुझे लगता है कि दिल्ली वालों का दिल जरूर खुश होगा. और दिल्ली के लिए मैं वो कर जाऊं जो आज तक नहीं हो पाया.

0: लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में आपके हिसाब से आफ्टर ईवी पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड, हम 27 का नंबर लेकर चलते हैं जनवरी, हाउ मच ऑफ पोल्यूशन विल कम डाउन?
1: आप ये देखिए, परसेंटेज में या टाइम में अगर हम पोल्यूशन को बांधेंगे तो मैं यही कहूंगी कि पोल्यूशन तो भाई बांधने वाली चीजों में तो नहीं है। इस ईवी पॉलिसी के साथ और ईवी पॉलिसी के अलावा भी जो मेजर्स हम लोग कर रहे हैं, हम 70 लाख पेड़ पौधे इस एक साल में लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ईवी पे लेकर के जा रहे हैं, हमने डस्ट मिटिगेशन पे बड़ा काम किया है, और इस सब चीजों को जोड़ते हुए जब सारी चीजें अलग अलग डायमेंशन में काम करते हुए भी हम जब एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी तादाद में जनता ईवी को अडॉप्ट करना शुरू करेगी उतना ही धीरे धीरे करके बाकी सारे एफर्ट्स करते हुए हम पॉल्यूशन को कम करते हुए जाएंगे। आज पूरी तरीके से दिल्ली हर सेगमेंट पे काम कर रही है, हर सेक्टर पे काम कर रही है।
0: आपके दिमाग में कि इतना परसेंटेज होगा, कैलकुलेशन करा होगा,
1: जब पॉल्यूशन
0: आपके दिमाग में होगा कि 29 के बाद आप देखेंगे डिप होना शुरू हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा पर डिप होना शुरू हो जाएगा।
1: क्या आप किसी भी एक दिन में आप ये बता सकती हैं कि पॉल्यूशन कितनी मात्रा में आपके पास आ जाएगा, किस दिन कितना होगा? क्या इस सवाल को आप बांध सकती हैं, आप मुझे बता सकती हैं कि इतना पॉल्यूशन होगा? आप कहेंगे इतना इस दिन होगा, तो मैं कहूंगी इतना इस दिन कम हो जाएगा।
0: नहीं, पर आपके दिमाग में एक गोल होगा ना कि इस साल तक मेरे फर्स्ट टेन्योर, ये बता दीजिए, चलिए रेखा गुप्ता का फर्स्ट टर्म एज चीफ मिनिस्टर एंड होते होते
1: ये सवाल आपने मुझसे पहले भी पूछा था, जब आप मुझे समय में बांधना चाहती थी तब भी मैंने कहा था कि बोलूंगी कम और काम ज्यादा करके दिखाऊंगी। मैं आज भी कह रही हूं कि मुझे वायदे बड़े नहीं करने, काम ज्यादा करना है। जिस एक साल की बात मैं कह रही हूं, जो आपने मेरे मुख्यमंत्री बनते ही मुझसे प्रश्न किए थे, आज यहां मैं बैठ करके आपको उन सारे सवालों का जवाब दे रही हूं कि मैंने क्या क्या किया। मेरे हाथ में अपना काम करना है, दिल्ली को बेटर फ्रेमवर्क में लेके आना है, उन पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में एग्जीक्यूशन को करना है, मेरा दायित्व है। उसके बाद में रिजल्ट आना जनता पे, लोगों की इन्वॉल्वमेंट पे और नेचर पे डिपेंड करता है। पर एक भी सेक्टर छूटा नहीं है जिसपे हम काम कर रहे हैं। हमने कूड़े के पहाड़ कम किए, हमने वाटर बॉडी को रिवाइव किया, हमने वॉल टू वॉल रोड्स बनाकर डस्ट मिटिगेशन किया, हमने प्लांटेशन के साथ में ग्रीन कवर बढ़ाया, हमने फॉरेस्ट नोटिफाई किए, हर एक सेगमेंट पे काम हो रहा है। तो दिल्ली आगे बढ़ रही है, दिल्ली पॉल्यूशन कम करने की दिशा में रोज एक कदम आगे बढ़ाती है।
0: और मैंने इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ द इंटायर इंटरव्यू में मैंने आपसे बोला था कि मैं ये बेबाक बोल सकती हूं दैट इट्स अ गुड पॉलिसी इफ इम्प्लीमेंटेड वेल। तो मैं यही जानना चाह रही हूं कि इससे पहले भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन कॉन्क्रीट एक्शन तो तभी माना जाएगा जब पोल्यूशन कम होगा, आई एम श्योर। ये सब
1: आप
0: करने
1: भी
0: के
1: यही है, मैं भी यही हूं, हम लोग देखते हैं अगर कम होता है वो भी समझ में आएगा, और कहां कमी रहती है तो उसके आगे बढ़ेंगे। आज जितना हम कर रहे हैं, क्या पिछली किसी सरकार ने इतना किया? ऑड इवन, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, इंजन ऑफ, इसके अलावा क्या किया पिछली सरकारों ने? ईवी पॉलिसी लेकर के आए पर उसकी सब्सिडी नहीं दी, उस सब्सिडी को भी हमारी सरकार ने आने के बाद पे किया है। अगर हम चाहते तो वो पेमेंट ना करते पिछली सरकार के टाइम की, पर जनहित में 45 करोड़ रुपए वर्तमान की सरकार ने पिछली सरकार की लायबिलिटी को पे किया। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में इस शहर को बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि दिल्ली की जनता जो चाहती है हम वो काम कर रहे हैं। आज से पहले कब दिल्ली में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस थे? आज दिल्ली में 3 नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस बन रहे हैं, बनके पूरा भी हो गया एक स्टेशन। तो आज तक तो कमर्शियल व्हीकल ऐसे ही चल रहे थे, आज उनको हम टेस्टिंग के प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आज पूरी तरीके से एमिशन फ्री व्हीकल्स की ओर हम बढ़ रहे हैं, आज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हम ईवी पे लेकर के आए हैं। आज दिल्ली जिस ओर जा रही है, सच में जो लोग चाहते थे कि देश की राजधानी कैसी हो, आज एक्चुअल में ये एफर्ट हो रहे हैं।
0: आई एग्री विद यू मैम, आई एग्री विद यू ऑन वन थिंग कि आप इस समय बहुत ही यूनिक टाइम पे चीफ मिनिस्टर बनी है। दिल्ली सरकार बीजेपी की है, नेबरिंग स्टेट्स बीजेपी के हैं, एलजी आपका साथ देते हैं, सेंटर बीजेपी का है। यू हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रियली चेंज द फेस ऑफ दिल्ली, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड What are your top three priorities? Things that you want to leave as Rekha Gupta's legacy? कि ये तीन चीजें आपने बदली अपने समय पर जो आप करना चाहती हैं पर्सनली.
1: मैं दिल्ली की जनता के लिए चाहती हूं कि दिल्ली शहर में वेस्ट मैनेजमेंट
0: नंबर वन
1: प्रॉपरली होना चाहिए, जो कि आज तक नहीं था. आज दिल्ली शहर में यदि 14,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज जनरेट हो रहा है तो उसका डिस्पोजल केवल 6,000 मीट्रिक टन हो रहा है. वेस्ट मैनेजमेंट को पूरी तरीके से इफेक्टिव करने के लिए मेरी पहली प्रायोरिटी है
0: जी.
1: सेकेंडली, हमारा जो सीवेज का सिस्टम है वो आज भी आधी दिल्ली में सीवर की लाइनें नहीं है, जो कि कारण बनती है यमुना की गंदगी का. पूरी तरीके से दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज लाइनों को लाइनअप करने की जरूरत है. पूरा का पूरा सिस्टम चैनलाइज करने की जरूरत है, जिससे सीवेज प्रॉपरली डिस्पोज हो और यमुना गंदी ना हो. ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है. और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, उसमें स्कूल आते हैं, उसमें हॉस्पिटल आते हैं, उसमें हमारे रोड्स आते हैं, ड्रेनेज आती है, इन सबको बेहतर करें तो मुझे लगता है कि दिल्ली वालों का दिल जरूर खुश होगा और दिल्ली के लिए मैं वो कर जाऊं जो आज तक नहीं हो पाया.

0: Missing JEE Advanced by just 2 marks would have shattered the dreams of many. But for Meerut's Sanket Kumar, it became the motivation to work even harder.
1: उस चैलेंज को दिमाग में रखते हुए मैंने फिर एक साल का ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया. ना ही मैंने किसी कॉलेज में अप्लाई किया, अप्लाई भी नहीं किया, एडमिशन तो दूर, मैंने अप्लाई भी नहीं करा था किसी कॉलेज में. एंड फिर मैंने खुद से ही इसी कमरे में बैठ के अपनी पूरी सेल्फ स्टडी वगैरह करी एंड यहीं पे मैं रहा हूँ. अपने जो प्रीवियस नोट्स थे 11, 12th के, वो मैंने वापस से रिवाइज करे, मैंने फ्रॉम स्क्रैच वापस से अपनी प्रिपरेशन शुरू करी.
0: His perseverance paid off. In 2022, Sanket cracked both JEE Main and JEE Advanced and secured admission to the Indian Institute of Space Science and Technology, where he pursued aerospace engineering.
1: मेरे को IST में एडमिशन मिला, तो वहाँ पे जाके मुझे एयरक्राफ्ट से स्पेसक्राफ्ट तक का जो इनोवेशन है उस चीज के मैं इंट्रोड्यूस हुआ. एंड वहां पे जाके मैंने बहुत ज्यादा लाइक स्पेस कंजर्वेटिव भी पढ़ाई करी, तो उसने मेरे अंदर का इनोवेशन करा कि हाँ, नॉट एयरक्राफ्ट, नॉट समथिंग, बट समथिंग रिलेटेड टू स्पेस, समथिंग रिलेटेड टू रॉकेट्स. तो वहां से फिर मैं अपनी प्रिपरेशन मैंने वहां पे शुरू करी.
0: क्वालिफाइंग डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन हिज एकेडमिक परफॉर्मेंस, Sanket impressed the ISRO panel with his technical knowledge and has now been selected as a scientist engineer. He will be posted to ISRO's propulsion complex in Mahendragiri, where rocket systems undergo critical testing before launch. His family says his journey is proof that one setback does not define success. From missing JEE Advance by just 2 marks to earning a place at ISRO, Sanket Kumar's story is a reminder that perseverance can sometimes achieve what talent alone cannot. Bureau Report, India Today.